हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, सन 1948 की श्रावण माह की तिथि 28, तदनुसार दिनांक 19 अगस्त सन 2026। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकेंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ही हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
4: महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में लिखा है, यदि तुम ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हो तो तुम्हें समाज के निम्नतम व्यक्ति के साथ स्वयं को एकरूप करना होगा। गुरु नानक ने भी इसी सत्य का प्रतिपादन किया था। गांधी जी मूलतः प्रभु प्रेमी थे तथा यही प्रभु प्रेम उनके जीवन में इन गुणों के रूप में फूट निकला था, सत्य और सच्चरित्रता, मानव मात्र के लिए प्रेम, आत्मबल, दया, क्षमा, संतोष और सभी धर्मों के प्रति समभाव, गरीबों के प्रति विशेष आकर्षण इत्यादि, तथा यही उनकी शक्ति का आधार व उनकी सफलता का राज था। जब 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में प्रार्थना स्थल पर हत्यारे की गोली से घायल होकर वे गिर पड़े थे तो उनके मुख से अंतिम शब्द निकले थे, हे राम। कहते हैं बड़े बड़े तपस्वियों के मुख से भी मरते समय प्रभु का नाम नहीं निकलता, पर गांधी जी ने मरते समय भी प्रभु का स्मरण किया। जिसने भी प्रभु की सही पहचान कर ली वह धर्म, संप्रदाय, जाति, देश, वर्ण, रंग, नस्ल के भेदभावों से ऊपर उठकर उस प्रभु की ज्योति को सब में एक समान देखता है। यही कारण था कि गांधी जी को राम व अल्लाह में कोई भेद नजर नहीं आया था, तथा वे पुकार उठे थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ समाज सुधार की खातिर दलितों के उद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए तथा उन लोगों को जिन्हें समाज हेय दृष्टि से देखता था हरिजन की संज्ञा दी। कितना प्यारा नाम है हरिजन, अर्थात वह जो प्रभु का प्रिय है। गांधी जी ने किस प्रकार स्वयं को देश के गरीब वर्ग के साथ एक रूप किया वह उनकी वेशभूषा से स्पष्ट जाहिर था। मात्र एक धोती लपेटे वे सारे देश में घूमते थे। गांधी जी देश के राजनीतिक धरातल पर बसंत की प्रातःकालीन मंद समीर की तरह आए। लोगों ने आंखें खोली तो देखा उन्हीं के समान एक साधारण मानव उन्हीं की वेशभूषा में उनके सामने खड़ा है और उन्हीं की वाणी में कह रहा है, उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। यह वाणी एक ऐसे हृदय से निकली थी जिसने स्वयं को लोगों के सुख दुख के साथ एकाकार कर लिया था, अतः ये सीधे लोगों के अंतःस्थल में प्रवेश कर गई। उन्होंने लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझा, उनके घरों में जाकर रहे, उनके हृदय में अपना घर बना लिया तथा अपनी कर्तव्य निष्ठा व सत्य निष्ठा से उनके दिलों के राजा बन गए। उन्होंने गरीब किसानों को जमींदारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए चंपारण जिले में आंदोलन प्रारंभ किया तथा इस सत्याग्रह के कारण किसानों का शोषण समाप्त हुआ। यही कारण था कि वे जिधर चलते थे उनके पीछे लाखों की भीड़ दौड़ पड़ती थी। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर।
3: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ज्योतों वाली माँ, छत्रों वाली माँ वैष्णो देवी की छत्र छाया में आए सवाली भक्तों के कदम जैसे जैसे माँ की ओर बढ़ते हैं, महिमा वैष्णो देवी की उनके दुख हर सुखों से उनकी झोलियां भर देती हैं। मुक्तिदायिनी माँ के द्वार पर हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। वैष्णो माता का जयकारा जीवन में नया उजियारा लाता है।

0: अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हमारी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: भक्त वत्सला माता वैष्णो देवी सदा सबकी पुकार सुनती हैं। राजा चंद्रदेव पर टूटा दुख का पहाड़, पहाड़ों वाली माता ने राजा और उसकी पुत्री का दुख हर लिया। उनके वरदान से पुत्री का निष्प्राण सुहाग जीवित हो गया। पुत्री के व्रत से मां प्रसन्न हो गईं। राजा की श्रद्धा भक्ति अष्टभुजाधारी मां ने स्वीकार कर ली। वैष्णो माता का द्वार पावन द्वार है।

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है श्री रामचरित मानस की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 66 6 6

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी हम दे दें आपको। सुबह 7 बजे सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, विज्ञान वार्ता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। आज का विषय है एज कंप्यूटिंग एवं इसका महत्व। गीत संगीत गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 7:30 पर। सुबह 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। 8:30 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। 9 बजे से होगा विविध भारती के कार्यक्रम और 10 बजे आप सुनते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। पुनः 11 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:02 का समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी के लिए। खेती बारी ये कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 5:30 पर। शाम 6:02 पर युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। शाम 6:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत। 7 बजे सुनते हैं आप प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार ऑल टाइम हिट्स। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:30 पर। 7:45 पर होगा कानूनी सलाह। श्रोता अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी चाहत में रात्रि 8 बजे। 8:45 पर होगा समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनते हैं स्पॉटलाइट। 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

रात्रि 10 बजे होगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा, 10:30 पर कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11 बजे सुनते हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हमेशा की तरह हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर। तो आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इंद्रदेव सिंह एवं साथियों के गाय इस लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब सुनते हैं विज्ञान वार्ता। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे अनुमेश कुमार से ये वार्ता, एज कंप्यूटिंग और इसका महत्व।
1: एज कंप्यूटिंग को दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एज अर्थात किनारा तथा कंप्यूटिंग अर्थात संगणना। क्लाउड कंप्यूटिंग के विपरीत एज कंप्यूटिंग के अंतर्गत संगणना संबंधी कार्यों के लिए डेटा का संग्रह डिवाइसेज के निकट ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक नई नेटवर्क प्रणाली है, जिसके तहत डेटा सर्वर तथा डेटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग प्रक्रिया के निकट लाया जाता है, ताकि लेटेंसी और बैंडविड्थ की समस्या को कम किया जा सके और किसी एप्लीकेशन की क्षमता में वृद्धि की जा सके। इसके विपरीत क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा का स्रोत मशीन से हजारों किलोमीटर दूर स्थित हो सकता है। एज कंप्यूटिंग के तहत डेटा सर्वर को स्थानीय स्तर पर लगाने से डेटा का संग्रह तथा उसकी प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर होती है और केवल आवश्यक डेटा को ही सुदूर स्थित क्लाउड पर भेजा जा सकता है। इससे जहां लेटेंसी कम होती है, वहीं बैंडविड्थ पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता। एज कंप्यूटिंग को IoT आधारित मशीनों के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए विकसित किया गया है। ये मशीनें क्लाउड से डेटा प्राप्त करने या डेटा में प्रेषण हेतु इंटरनेट पर निर्भर होती हैं। इनमें से अधिकांश अपने कार्यान्वयन के दौरान अत्यधिक मात्रा में डेटा उत्पन्न करती है। उदाहरण के तौर पर किसी फैक्ट्री में स्थापित कोई डिवाइस या कैमरा जो सुदूर स्थित किसी ऑफिस में डेटा संप्रेषित कर रहा हो, वहाँ एज कंप्यूटिंग उपयोगी हो सकता है, क्योंकि किसी एक डिवाइस में डेटा संप्रेषण करना आसान होता है। लेकिन यदि किसी एक समय में कई डिवाइसेज एक साथ डेटा संप्रेषित कर रहे हो, तो इससे न केवल डेटा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि लेटेंसी की समस्या भी उत्पन्न होती है और प्रयोग किए गए बैंडविड्थ की कीमत भी अत्यधिक होती है। एज कंप्यूटिंग द्वारा स्थानीय स्तर पर डेटा की प्रोसेसिंग तथा संग्रह से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। इन एज डिवाइस में विभिन्न मशीनें शामिल हो सकती हैं, जैसे IoT सेंसर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, CCTV कैमरा, इंटरनेट से संचालित माइक्रोवेव ओवन या टोस्टर आदि। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर एज कंप्यूटिंग के माध्यम से लाखों कंप्यूटर या अन्य मशीनों से डेटा को संचालित, प्रोसेसिंग तथा डिलीवर किया जा रहा है। एज कंप्यूटिंग का सर्वाधिक प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रियल टाइम कंप्यूटिंग आदि के लिए किया जा रहा है। तेज नेटवर्किंग तकनीकी के दौर में एज कंप्यूटिंग का प्रयोग रियल टाइम एप्लीकेशन के निर्माण तथा उनके संचालन के लिए आवश्यक है। इन एप्लीकेशनों में वीडियो प्रोसेसिंग एवं एनालिटिक्स, स्वचालित कार, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि शामिल है। भूमिका की बात की जाए तो एज कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना आवश्यक है। वर्तमान में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जहां अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत जब कोई यूजर ऑनलाइन कार्यों का संपादन कर रहा होता है, तब वह सुदूर स्थित किसी डेटा सेंटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है, जिसे क्लाउड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन वीडियो या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एप्लीकेशन, ऑनलाइन फाइल कन्वर्टर, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, डेटा बैकअप और रिकवरी आदि क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत कार्य करते हैं। ये डेटा सेंटर पूरे विश्व में कुछ ही स्थानों पर स्थित है, जहां डेटा को संग्रहित तथा प्रोसेस किया जाता है। विश्व के अधिकांश डेटा सेंटर गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट आदि प्रमुख कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत क्लाउड स्टोरेज शामिल होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी निजी सूचनाएं एवं डेटा सुरक्षित रख सकता है। गूगल ड्राइव, Dropbox, iCloud आदि क्लाउड स्टोरेज सुविधा प्रदान करने वाली एप्लीकेशन है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में कई समस्याएं भी हैं, जैसे लेटेंसी, दूर स्थित किसी डेटा सेंटर या क्लाउड से वास्तविक समय में संपर्क कर पाने में हुई देरी को लेटेंसी कहते हैं। अपर्याप्त बैंडविड्थ, उन कंपनियों में जहां एक साथ कई डिवाइसेज द्वारा किसी क्लाउड स्टोरेज में डेटा प्रेषित किया जाता है, वहां निर्धारित बैंडविड्थ पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और इस वजह से उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एज कंप्यूटिंग से लाभ की अगर बात करें, तो एज कंप्यूटिंग का सर्वाधिक लाभ यह है कि यह डेटा की प्रोसेसिंग तथा संग्रह तीव्रता से कर सकता है, जिससे यूजर्स के लिए आवश्यक रियल टाइम एप्लीकेशन दक्षता को बढ़ाया जा सके। एज कंप्यूटिंग के प्रयोग से स्वचालित कार्य, स्वचालित निर्माण प्रणाली तथा स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में मदद मिलेगी। एज कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियां AI की बढ़ती मांग को देखते हुए छोटे चिप के आकार के एज डिवाइसेज में एवं मॉड्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं, जिनका प्रयोग ड्रोन, रोबोट्स या अन्य कृषि यंत्रों में किया जा सकता है। मोबाइल क्षेत्र में 5G तकनीक आने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे एज कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तीव्र प्रगति होगी तथा ऑटोमेशन, AI रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए अनुकूल माहौल मिलेगी। एज कंप्यूटिंग में निहित संभावित चुनौतियां भी हैं। डेटा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एज कंप्यूटिंग की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। विभिन्न मशीनों में अलग अलग डेटा को संग्रह के कारण यह एक केंद्रीकृत अथवा क्लाउड आधारित प्रणाली की तुलना में कम सुरक्षित माना जा रहा है। जैसे वर्तमान में क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन आदि उन कंपनियों की है जिनकी विश्वसनीयता अधिक है। इसके अलावा अलग अलग डिवाइसेज में डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा, विद्युत और नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता आदि इसके समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं। जहां एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वहीं एज कंप्यूटिंग में हम केवल उसके उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है कि एज कंप्यूटिंग में डेटा का नियंत्रण यूजर के पास न होकर एज डिवाइस के पास होता है, जो कि इसकी गोपनीयता तथा सुरक्षा के लिए संदेहास्पद हो सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे वार्ता एज कंप्यूटिंग और इसका महत्व। वार्ताकार थे अनुमेश कुमार। इसी के साथ विज्ञान वार्ता का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इसी के साथ गीत संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे गीत संगीत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब समय हो चला है समाचार प्रभात का। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र।

0: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे। ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जाँच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
7: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
3: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
8: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और महभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
9: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
10: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
3: धन्यवाद।

0: of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का किया जाएगा अनुरोध। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम एचईसी प्लांट के दौरे पर आज पहुंचेगी रांची। और राज्य में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द और सीआईडी जांच वाली कुल 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। रद्द परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, सीडीपीओ, ड्रग इंस्पेक्टर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। कल देर रात जारी 8 अधिसूचनाओं में कई परीक्षाओं को रद्द करने के साथ जांच और परीक्षा सुधार से जुड़े फैसलों की जानकारी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी और आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिसमें जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी शामिल हैं। सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। साथ ही बाहरी परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर भी कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। सरकार ने परीक्षा एजेंसी को भविष्य में राज्य की किसी भी परीक्षा का संचालन करने से प्रतिबंधित करते हुए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि राज्य सरकार की भी एजेंसियां हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा करना चाहिए।
2: भाजपा नहीं चाहती है कि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो। छात्रों के हित से उनको कोई लेना देना। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आंदोलन कंटिन्यू करे ताकि उन्हें कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का अवसर। सीआईडी में ताला लगा दे, एसीबी को बंद कर दे, स्पेशल ब्रांच को बंद कर, हमारी भी एजेंसी है। और क्राइम हो चाहे इकोनॉमिकल क्राइम, वो राज्य का सब्जेक्ट।
0: वहीं भाजपा सांसद बीडी राम ने कल गढ़वा में कहा कि सीबीआई में जो दक्षता है वह सीआईडी

0: नहीं है, इसलिए प्रदर्शनकारी छात्रों की जो मांग है राज्य सरकार उसे माने।
1: छात्रों की मुख्य मांग है जिसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, उस मांग को सरकार ने अभी तक नहीं माना। क्या सरकार स्वयं इस बात से डरी हुई है कि सीबीआई की जांच हो जाती है बहुत सारे नामी गिरामी लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी? क्या पहले एसीबी सीआईडी के रहते हुए सीबीआई की जांच नहीं होती?
0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में आंदोलन आज 26वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मंच ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि वे लोग सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कल रात आक्रोश मार्च निकाला और अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के दौरे पर आज रांची पहुंचेगी। समिति कल एचईसी के एफएफपी, एचएमबीपी और एचएमटीपी प्लांट का निरीक्षण करेगी। टीम के दौरे को लेकर लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे एचईसी के कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को जमा करें। सीईओ ने बीएलओ को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव में सूची से ना छूटे, इसके लिए घर घर संपर्क करें। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई है। 5 दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष, 6 दोषियों को अधिकतम 8 वर्ष और 1 को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 40,000 से लेकर 90,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। कोडरमा पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा में लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस घटना में तिलैया थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिस कर्मियों को मामूली चोट भी आई है।
2: कुछ लड़के हथियार के साथ और एक बैंक डकैती की तैयारी कर रहे हैं। वहां में 5 से 6 लोग दिखाई दिए, जिनके द्वारा पुलिस की टीम को देखने के बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में हमने फायरिंग की, उसमें एक युवक से गोली लग गई है पैर में, और इसके अलावा 3 और लोग डिटेन किया है। इनके पास सामान मिले, उसमें 3 पिस्टल है, 15 गोलियां हैं और 5 मैगजीन है। इनके पास जो मोबाइल्स मिले हैं उसमें प्रॉपर रेकी के वीडियोज मिले।
0: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 के मुकाबले में कल भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत पर झारखंड हॉकी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रद्द की गई और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की जारी सूची की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सीजीएल और सिविल सेवा समेत 22 परीक्षाएं रद्द। प्रभात खबर ने अगले सत्र से बीआईटी मिश्रा में राज्य के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित कराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आम्रपाली मगध कोल परियोजना में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की विशेष अदालत से 12 आरोपियों को सजा सुनाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, अभी थमने वाला नहीं है सीजीएल परीक्षा विवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का किया जाएगा अनुरोध। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम एचईसी प्लांट के दौरे पर आज पहुंचेगी रांची। और राज्य में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म 100 डेज का ये गीत। इसी गाने के साथ मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा द राइज पार्ट वन। फिल्म से ये गीत रकीब अलम ने इसे लिखा, देवी श्री प्रसाद ने संगीत से सजाया। और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेग्यूराइट फोटोग्राफी प्रक्रिया के पेटेंट की घोषणा की गई थी और फोटोग्राफी की इस तकनीक को लुई डिग्रे और जोसेफ नाइस फोर निप्स ने इजाद किया था, इसीलिए इसे डेग्यूराइट फोटोग्राफी कहते हैं। और तो जब साल 2010 में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इस तारीख को इसीलिए चुना गया। और फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी याद को कैद करना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं या किसी खास उत्सव में आप शामिल होते हैं तो फोटोग्राफ आप अपने पास रखते हैं। बचपन की कितनी तस्वीरें हमारे पास है और हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें भी हम अपनी उनकी तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों तस्वीर की तकनीक बदलती चली जा रही है और मोबाइल अब हमारे हाथ में आ चुका है और हम केवल यादों को कैद करने का माध्यम ही तस्वीर को नहीं बनाते बल्कि लगातार ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं, जिन्हें देखने के लिए भी कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि पहले जिस तरह से चुनिंदा तस्वीरें खींची जाती थी और बैठकर एक साथ एल्बम में वो तस्वीरें देखी जाती थी, और जब भी कभी सब हम सब मिलते थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हों चाहे कोई भी मौसम हो, और जब भी कुछ ज्यादा लोग हम मिलके बैठते तो बस एल्बम निकाला जाता और याद की जाती वो सारी बातें कि उस तस्वीर को खींचने से ठीक पहले क्या हुआ था, क्यों किसी ने ऐसा अजीब सा मुंह बनाया हुआ है, ये क्यों कोई हंस रहा है, किस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, वो कपड़े कहाँ से लाए गए थे, इस तरह की ढेरों बातें ढेरों यादें ताजा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब हजारों फोटो हम खींचते हैं लगातार, बल्कि एक ही दिन में हम पता नहीं सैकड़ों फोटो तो हम खींच ही लेते हैं, तो उन्हें देखने का धैर्य भी अब खोता जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजें, समीर अंजान के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और बात हो रही विश्व फोटोग्राफी दिवस की। तो ये बताइए कि क्या आप आज के इस दिन को मनाने के लिए सेल्फी लेने वाले हैं या किसी की फोटो खींचने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं अपनी कोई बेहतरीन तस्वीर या अपनी खींची हुई कोई खूबसूरत तस्वीर। ये आप सोचिए, तब तक ये गीत भी सुन लीजिए।
4: जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
5: ए छोरा गा

0: एव जैते टू का ये गीत आपने सुना, जारा एस खान और जैस मानिक की आवाजें, जैस मानिक और तनिष्क बागची के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रूमी और तनिष्क बागची की आवाजें, तनिष्क बागची का संगीत, नीरज राजावत के बोल। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजें, अमिता भट्टाचार्य के बोल, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार।

हर टेंशन को झटक कर झूमते नाचते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, दिन भर में जहाँ भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक में आज के लिए बस इतना ही।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
3: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जानी मानी संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी पर।

खयाम। फिल्म उद्योग में ये नाम एक बेमिसाल संगीतकार का नाम है, एक ऐसा संगीतकार जिसकी फिल्मोग्राफी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो उनके स्टैंडर्ड से कम हो। एक ऐसा संगीतकार जिसने हमेशा हर गाने में अपना 100% दिया।

18 फरवरी 1927 को नवा शहर पंजाब में मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था और इस शौक के चलते ही एक ख्वाब आंखों में पलने लगा था। ये ख्वाब था कुंदन लाल सहगल की तरह गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना। जी हाँ, खयाम कुंदन लाल सहगल की तरह एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे। खयाम के पिता को साहित्य, कविता और संगीत से लगाव था। वो अपने बच्चों को लेकर जलंधर जाते और उन्हें फिल्में भी दिखाया करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। जब नवा शहर से जलंधर ट्रेन जाती तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता खटकर कलां। यहां ट्रेन रुकती तो पिता अपने बच्चों से कहते, इस गांव को सलाम करो क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और बच्चे ऐसा ही करते। खयाम के भीतर देशभक्ति का जज्बा इस बचपन से आया था। इसका क्या असर हुआ ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एक दिलचस्प किस्सा। 11 बरस की उम्र थी खयाम की। संगीत सीखने का जुनून बहुत ज्यादा था। वो किसी को भी बताए बिना जलंधर से बिना टिकट ट्रेन में दिल्ली भाग आए। दिल्ली में उनके चाचा रहा करते थे। चाचा के पास पहुंचे और उन्हें जब सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वहां उनकी दादी मौजूद थीं, जिन्होंने चाचा को शांत करवाया। संगीत के इस शौक को देखते हुए चाचा ने खयाम को हुस्न लाल और भगत राम की निगरानी में रखवा दिया, जहां खयाम ने 5 बरस संगीत सीखा। इस तरह से हुस्न लाल और भगत राम खयाम के पहले संगीत गुरु हुए। 17 बरस की उम्र होते होते खयाम एक बार फिर घर से भाग निकले। ये घर से दूसरी बार भागना था।

इस बार वो दिल्ली नहीं आए बल्कि सीधे मुंबई आ गए। थोड़े दिन संघर्ष किया और उन्हें ये समझ में आया कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है और ये सही वक्त नहीं है मुंबई में स्ट्रगल करने का। इसलिए खयाम वापस लौट गए। संगीत के इस जुनून को देखते हुए किसी दोस्त ने उनकी मुलाकात चिश्ती साहब से करवाई। चिश्ती साहब यानी गुलाम अहमद चिश्ती, जो एक संगीतकार थे और चिश्ती बाबा के नाम से मशहूर थे। खयाम लाहौर में उनसे मिलने पहुंचे। उनसे कुछ गाने को कहा गया। खयाम ने जो गाना सुनवाया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर चिश्ती बाबा ने उन्हें अपना सहायक बना लिया एक शर्त पर। शर्त ये थी कि रहने और खाने की सहूलियत मिल जाएगी पर पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा मिलता नहीं था इसलिए पैसे की किल्लत हुई तो अपने भाई के पास जा पहुंचे। भाई का एक फलता फूलता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब इस स्थिति के बारे में खयाम ने भाई को बताया तो बड़े भाई ने एक जोरदार तमाचा खयाम को रसीद कर दिया। उस रात खयाम सो न पाए, करवटें बदलते रहे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। सन 1943 में खयाम फौज में शामिल हो गए। यहाँ एक गाना आपको सुनवाते हैं। जब भारत जंग से मुब्तिला था, जब हौसला पस्त हो रहा था, तब जानिसार अख्तर ने देश का हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा था और इसे खयाम ने स्वरबद्ध किया था।

फौज में रहते हुए भी ख्वाब में उन्हें कुंदन लाल सहगल दिखते, अपने आराध्य, अपने हीरो। मुंबई उनको पुकारता था। आखिरकार 3 बरस फौज की नौकरी करने के बाद खयाम ने फौज से इस्तीफा दे दिया, वापस चिश्ती बाबा के पास चले गए। यहाँ जाने माने निर्देशक बीआर चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से जोर दिया कि आपको खयाम को पैसे देने चाहिए। इस तरह से खयाम की तनख्वाह तय हो गई 125 रुपया माहवार। पहली बार खयाम के जहन में ये बात आई कि संगीत से पैसा भी मिल सकता है और इज्जत भी मिल सकती है। सन 1947 में खयाम चिश्ती बाबा के सहायक रहमान से मिलने के लिए लाहौर से मुंबई आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने गुरुओं से हुई, हुस्न लाल भगतराम, और उन्होंने पहली बार खयाम से एक गाना गवाया और इस तरह से खयाम गायक बन गए। यहीं रहमान के साथ मिलकर उन्होंने जोड़ी बनाई और ये जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत देती रही। जब अगस्त में भारत आजाद हुआ तो रहमान पाकिस्तान चले गए, शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी टूट गई। आखिरकार खयाम शर्मा जी के नाम से संगीत देते रहे। इसी दौर का गीत है सन 1948 में आया बीवी फिल्म का, मोहम्मद रफी का गाया ये।

इस दौर में खयाम ने प्यार की बातें, बीवी और पर्दा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। समय बीतता चला जा रहा था। आखिरकार सन 1952 आया जब जिया सरहदी ने उन्हें फिल्म फुटपाथ के लिए साइन किया। मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और चंदूलाल शाह जैसे लोगों ने जोर दिया कि इस फिल्म का संगीत उन्हें शर्मा जी के नाम से नहीं देना चाहिए, बल्कि अपना असली नाम रखना चाहिए, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो फिल्मों में चलता नहीं, इसलिए अपने नाम में से खयाम ने खयाम शब्द को चुना और आगे के करियर में उन्होंने खयाम के नाम से ही संगीत दिया। यानी फुटपाथ वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर संगीतकार उनका नाम आया खयाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। अली सरदार जाफरी और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत खूब कामयाब हुआ था।

ये कामयाबी का पहला स्वाद था। खय्याम कामयाब होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं हासिल कर पाए, पर यूं था कि मुंबई में उनके पैर जम गए थे। सन 1958 में राज कपूर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए शंकर जयकिशन की बजाय खय्याम का चुनाव करवाया। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के गाने लिखे। दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी इस फिल्म का संगीत खूब चला और खय्याम की खूब ख्याति हुई।

सन 1964 में फिल्म शगुन आई। साहिर लुधियानवी के गीत इस फिल्म में खयाम साहब की शरीक हयात जगजीत कौर ने कुछ गाने गाए।

दिक्कत ये थी कि खय्याम साहब के गाने तो बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और फिल्म जगत में ये बात चल निकली कि खय्याम अनलकी हैं। जिन फिल्मों में वो संगीत देते हैं वो अमूमन चलती नहीं हैं। बहुत बरस तक खय्याम साहब के पास काम नहीं था, जबकि उनके काम की बहुत तारीफ होती रही थी। सन 1976, यश चोपड़ा ने जमाने भर के विरोध के बावजूद फिल्म कभी कभी के लिए खय्याम को साइन किया। कभी कभी खय्याम के करियर का एक माइलस्टोन बन गई।

कभी कभी सुपरहिट हुई और इसके बाद आई खयाम के करियर की ज्यादातर फिल्में। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने सुने जाएं। फिल्म त्रिशूल, खयाम की शैली से बिल्कुल अलग गाना।

मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म बनाई उमराव जान और इसके लिए खय्याम को चुना गया। खय्याम ने इस फिल्म में अपने पूरे हुनर से काम लिया।

फिल्म उमराव जान के लिए खय्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1981 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का संगीत देने के लिए खय्याम को आमंत्रित किया तो वो इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। ये खय्याम के उसूल थे जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। सन 1983 कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, इस फिल्म के लिए हबशी की आवाज मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए और आखिरकार इस ऑडिशन में कामयाब हुए विविध भारती के हमारे पूर्व सहयोगी कब्बन मिर्जा, और आया ये काल।

खयाम की फिल्मोग्राफी अपनी क्वांटिटी में भले कम हो, लेकिन क्वालिटी में खयाम का कोई जवाब नहीं। उनकी फिल्मोग्राफी में एक भी फिल्म और एक भी गाना ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई समझौता हो। वो हमेशा अपना 100% अपनी हर फिल्म और हर गाने में उतारते रहे। सन 1980 में आई

धीरे धीरे फिल्म संगीत से खयाम की दूरी बढ़ती चली गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में संगीत दिया, टाइटल सॉन्ग्स तैयार किए और वो भी कमाल के थे। आज के फनकार कार्यक्रम में खयाम की बात करें और उनके गैर फिल्मी एल्बम्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मीना कुमारी के अशार कंपोज किए, एल्बम था आई राइट आई रिसाइट।

चाहे मुकेश हूँ, आशा भोसले या मोहम्मद रफी, खयाम ने सभी के लिए गैर फिल्मी एल्बम तैयार किए। जब मोहम्मद रफी गाते हैं पाँव पड़ूं तो रिश्याम, तो यूं लगता है जैसे वो पूरे समर्पण के साथ अपनी रूह को अपनी आवाज में उतारे दे रहे हैं।

फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने खय्याम को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आधे घंटे के इस वक्त में खय्याम के हर एक गाने, हर एक फिल्म की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन खय्याम की विदाई फिल्म संगीत से मेलेडी की, ईमानदारी की, उसूलों की विदाई है, नाजुकी की विदाई है।

0: ये था संगीतकार खय्याम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10, 9, 8, 7,

0: आवाज, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी दोस्तों को ममता का नमस्कार, प्रणाम, जोहार।

दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले आज के दिवस को। आज है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस।

दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की स्मृति

सहायता की भावना बढ़ाने की जरूरत है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को प्रेरित करना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सहायता करना ही सच्ची मानवता है।

दोस्तों आइए जानते हैं फोटोग्राफी के इतिहास को। फोटोग्राफी का इतिहास लगभग 200 वर्षों पुराना है। कैमरे की मूल अवधारणा, जिसमें प्रकाश के माध्यम से वस्तु की छवि बनाई जाती है, 1820 के दशक में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ निसिफोर ने दुनिया की पहली स्थायी फोटोग्राफिक छवि बनाने में सफलता पाई थी। फिर 20वीं सदी में फिल्म कैमरे विकसित हुए और फोटोग्राफी पत्रकारिता, कला और व्यक्तिगत यादों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। और आज डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन के कारण फोटोग्राफी बहुत आसान और आम हो गई है। फोटोग्राफी ने प्रकाश और रसायन आधारित प्रक्रियाओं से शुरू होकर आज डिजिटल और स्मार्टफोन तकनीक तक लंबी यात्रा की है।

0: दोस्तों अब आइए जानते हैं हमारे आसपास चल रही गतिविधियों की जानकारी। हजारीबाग बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी परिसर में चल रहे जनजातीय गौरव उत्सव 2026 के दूसरे दिन मंगलवार को महिला उद्यमियों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र है। उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिला उद्यमियों और महिला समूहों ने करीब 80 स्टॉल लगाए हैं। इनमें महिलाओं द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए कपड़े, अचार, हस्तशिल्प, फूलों से बने सजावटी सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं सहित कई पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। स्टॉलों पर जनजातीय कला और संस्कृति की झलक के साथ महिलाओं की रचनात्मकता देखने को मिल रही है। कई महिला उद्यमियों ने बताया कि वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उत्पाद तैयार करती हैं। उत्सव उनके लिए अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने और सीधे बिक्री का अवसर उपलब्ध करा रहा है। शहर की डगर आसान नहीं है, जरा संभल कर चले। जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे आम जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूटने की वजह से बिजली भी प्रभावित हुई है। शहर के कुनाल नर्सिंग होम के पास गुलमोहर पेड़ की बड़ी डाली टूटकर गिरी। इससे सड़क की आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गई। कई पोल के बिजली तार क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस क्षेत्र में बिजली प्रभावित हो गई है। दोपहर तक टूटे हुए पेड़ की डाली काट कर हटा लिया गया है।
1: आंखों से आंखें चार करने दो।

दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में अब नक्शा पास कराना जरूरी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के निर्माण से पहले नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक के तहत झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 को पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। ऐसे भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है।

दोस्तों आइए जानते हैं आज का विचार। सच्ची सफलता वही है जो हमें आगे बढ़ने के साथ दूसरों की मदद करना भी सिखाए।

0: दोस्तों, इसी गाने के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार।
1: 10, 9, 8, 7

0: तो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा के स्वर से।

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार खयाम की याद का दिन है। आइए सुने ये रचना बेगम अख्तर की आवाज में, सुदर्शन पाकिर के बोल है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

उषा मंगेशकर, भूपेन हजारिका और हेमंती शुक्ला की आवाजें थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजें सुनिए। एल्बम का नाम है ये प्यार का मौसम है।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारत

तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नॉन फिल्म एल्बम से गीत। कुणाल वर्मा के बोल थे। पेश खिदमत है जगजीत सिंह की आवाज। कैफ भोपाली के बोल हैं। प्रोग्राम है रंग तरंग।

ये थी जगजीत सिंह की आवाज, कैफ भोपाली के बोल थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआओ शिनवां से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म है दिले नादान। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत। आज संगीतकार खयाम की याद का दिन है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजला

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे खयाम का संगीत था। फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है।

0: सस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ, यानी रेडियो सखी के साथ। अब वो जो इबारत है वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें भी पता चल जाए कि आज की इबारत क्या है और इबारत से जुड़े हुए शब्द, मतलब इसमें जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े गाने आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। चांदनी रात बहुत खामोश थी, आकाश पर चांद और तारे चमक रहे थे। खिड़की के पास बैठी वो देर से दूर उसी तारे को देख रही थी। जाने क्यों उसे लगता था कि उस चमक में कोई पुरानी याद छिपी है। टेबल पर एक तस्वीर रखी थी, तस्वीर में दो लोग थे, कभी बहुत पास आज बहुत दूर। उसने गुनगुनाया, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। उन दिनों का दीवानापन भी कितना अजीब था। एक आवाज पर दिल धड़क उठता था, एक नजर पूरी रात जगा देती थी, फिर न जाने कब रंजो गम ने प्रेम की जगह ले ली। वो तस्वीर उठाकर देर तक देखती रही, मन ही मन जैसे कोई गीत बज उठा, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, काश कोई सचमुच आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि इतने बरसों की दूरी शायद बस एक भूल थी। मगर दरवाजा खामोश था, सिर्फ हवा पर्दों को हिला रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, आप और हम या तुम और हम, कभी यही तो एक पूरी दुनिया थी। अब तस्वीर में बची दो मुस्कुराती आंखें थी और उन आंखों के पीछे छिपी एक अधूरी कहानी। तभी उसकी नजर फिर उस तारे पर गई, वो अब भी चमक रहा था। उसे लगा शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता। लोग दूर चले जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तस्वीरें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन किसी रात किसी अकेली खिड़की के बाहर वही प्रेम एक तारे की तरह टिमटिमाता रहता है। उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और धीमे से कहा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल कि अब दर्द भी तुम्हारी याद जैसा प्यारा लगता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप भी चाहें तो बुन सकते हैं कहानी, लेकिन साथ में जरा वो जो तारों वाली बात है कि उसकी नजर फिर उस तारे पर गई। तो बचपन में बहुत सारे तारे देखते थे एक साथ आंगन में लेटकर चारपाई पर, ऐसा ही एक गाना भी है गुलजार साहब का लिखा हुआ। बहरहाल वो गाना तो याद कीजिए, लेकिन तारों वाले गाने तो बहुत सारे आपको लिखने ही है, साथ में वो याद साझा कीजिए कि जब तारे गिनते थे तो आसमान में तारे गिनते गिनते संख्या भूल जाते थे और तारे वहीं के वहीं रह जाते थे। तो कई बार सप्तऋषि तारा और तारों के कई नाम हम गिनाते थे, ध्रुव तारा, वो देखो वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि तारा। तो ऐसी कोई याद है तो वो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहेलियों का। पहेलियां भी तो बूझनी है, जरा बताइएगा कि किस फिल्म का ये गाना है और गीतकार का नाम क्या है। संगीतकार का नाम तो आप बूझ चुके हैं, आज उनकी याद का दिन है जिन संगीतकार का ये गाना है। वैसे बूझिए आप गीतकार संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। पहली आसान तो है ना, ये गाना तो आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं।

0: शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे, चांदनी, फासले, रात, रंजुगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम, आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है, और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वो दिल तोड़ कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ती है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब नहीं आएगा? आखिर कब तक कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी? क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़े, और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी, और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।
1: के बीच बेहतर संवाद से आ रहे सकारात्मक परिणाम, और राज्य में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सैकड़ों घर हुए प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने गंभीर अनियमितताओं के कारण रद्द और सीआईडी जांच वाली कुल 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। रद्द परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, CDPO, ड्रग इंस्पेक्टर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। कल देर रात जारी 8 अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के रद्द किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रोजेक्ट भवन के पास अभ्यर्थी सरकार के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे और कोर्ट का हवाला देते हुए फैसले को जल्द

0: की जनता बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।
1: जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी गई है कि उस जिम्मेवारी का निर्वहन अपने मेरी क्षमता से करूं। इस शासन में इस

0: गड़बड़ी की जांच की आवश्यकता पर विचार किया और अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिसिंग का तरीका बदल रहा है। पुलिस ग्रामीणों के साथ बेहतर संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। कई दशकों तक नक्सलवाद की चपेट में रहे पलामू जिले के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों की आम लोगों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
1: पलामू जिले के जनता के लिए थाना प्रभारी प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे। आम जनता जो ओडी पदाधिकारी से या थाने में किसी प्रकार की समस्या लेने आती है और जिनको थाना प्रभारी से मिलना है वो इस समय के बीच में थाना में जाकर थाना प्रभारी से मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिकता जनता की समस्या सुनने के लिए दें जिससे कि आम जन की समस्या थाना स्तर पर भी निदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है।
0: हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन संकट और आपदाओं के बीच मानवीय सहायता के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। डाक विभाग की ओर से सिमडेगा के विभिन्न विद्यालयों में राखी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सिमडेगा के जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल में विद्यार्थियों ने अपने हाथों से राखियां बनाई जिन्हें डाक विभाग देश के वीर सैनिकों के पास भेजेंगे। सिमडेगा पोस्ट ऑफिस के डाक सहायक राजू कुमार ने बताया कि डाक विभाग ने रक्षाबंधन को

0: बाद स्थित मैथन डैम के कई फाटक भी खोले गए हैं। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों के किनारे बसे घर प्रभावित हुए हैं।
1: जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोनों नदियां अब भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खरकई नदी के उफान का सबसे ज्यादा असर किनारे और निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। बागबेड़ा नया बस्ती में 350 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जबकि मानगो के करीब 200 घर प्रभावित हुए हैं। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने JPSC और JSSC में गंभीरता अनियमितताओं को लेकर रद्द और CID जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं के रद्द होने के बाद नौकरी कर रहे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री खनिज संशोधन बिल पर झामुमो समेत अन्य दलों के विरोध से निपटने की रणनीति पर झारखंड भाजपा के नेताओं संग करेंगे बैठक। छात्र आंदोलन पर भी होगा चर्चा। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से आ रहे सकारात्मक परिणाम और राज्य में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर। स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सैकड़ों घर हुए प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारी पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया। हमारी पहेली ये थी कि कौन सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिलेनादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं।

और बहुत ज्यादा तादाद में इसका जवाब आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाजा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बॉबी फिल्म बॉबी में डिंपल है, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाजा खोलती है। क्या बात है भाई, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी है और जानकारियां बहुत समृद्ध है, हम भी समृद्ध हो रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते। और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते, देखो तारा भाग रहा है, कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था। और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है, बॉबी फिल्म बॉबी में डिंपल होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहां तुम चले गए। और फिर एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा। और एक श्रोता ने लिखा, थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने, सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था, अब वो दुनिया नहीं रही। अब भी छत है, आंगन है, लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं। तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप जरा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे। अगर आपको तारीख नहीं आ तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से। अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी। इबारत का कौन सा शब्द इसमें आ रहा है?

0: बाजार फिल्म की ये गजल थी भूपिंदर की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने, बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमराव जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत भूपिंदर की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ही गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूँ और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए, जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपके आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन के बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, पानी की बूंदें छमछम करती हैं, जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रहे हैं, ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बयां करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन रहे हैं, वही गीत हम उन दिनों अपने रूफ, अपने छत पर, घर की छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बुझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो जरूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी

माया फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे। छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहां पर हम बजा दें अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी। तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। वही चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्योहार होता है, कोई खास त्योहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है। हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है। पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं। कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है।

0: और कई गानों में भी, कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियां हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ, तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं? कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया, या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते जरूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।
1: ओ थी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया।

सावन क्वानेदु फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है. अरुण गोविल और जरीना वहाब, हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे. तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है. जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं. और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है. और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूँ. फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है. तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है. और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे. और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं. और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है. मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं. और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी. एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे. खयाम साहब के जो गाने हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे. चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से. आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में. कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है. और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है. तो एक ये पहली होगी, दूसरी पहली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में.

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, और ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये लिख रहे हैं, आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर वर्षों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवाने, प्रेयसी चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा ये, जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

शगुन फिल्म का गाना, जगजीत कौर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के

0: रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं, तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोलते सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं। हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं। तो चलिए अंत फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

शहनाई फिल्म का गाना था आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल।

0: के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित छह प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि

0: विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न हैं। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दालमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में

0: भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल खयाम का संगीत है।

0: सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लेकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी, तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था, उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे। लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे, और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए।
1: हाँ,
0: और कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता था। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो

0: एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते हैं।
1: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुनिए।
1: चलिए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं विविध भारती पर। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं। 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे। तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था और जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वह पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बढ़ता, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना, कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है, उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें है ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल।
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचे और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के होंगे। आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिया में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने होते हैं,
1: जो बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पे राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ।
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी।
0: हाँ।
1: है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं। हाँ। हमारे वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो पारंपरिक
1: कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे आपने
1: लाल कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की धारियां होंगी। अगर गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता है।
1: बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर यह बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो जॉर्जेट, कॉटन
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी। और अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें पांच रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो हाँ। लहरदार जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियां ये ताजा डिजाइन आजकल खूब वहां के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियां ही नहीं जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया कि जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुसल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
0: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं। पगड़ियों में भी लहरिया होता है जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है जैसे कि लाल पीला हरा नीला गुलाबी और एक होता है एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं सुंदर साड़ियों की बात हो रही है सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं, और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं। और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट पन्ने वाली जो चीजें होती है ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में।
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमारे श्रोता ने हमें लेकर भेजी है। 1 कप सूजी में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब 1/2 चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, 1/2 कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें, सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी से देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार,
1: हाँ, मतलब ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए,
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट इसे आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगे, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत,
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हैं पूनम केरकेट्टा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन आगामी दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के बड़े फैसले के बाद छात्र संगठनों ने यह निर्णय लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो स्थित चिन्मय विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुई। इस खास मौके पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय ने युवा मस्तिष्कों को संवारने और शिक्षा के क्षेत्र में अपने 50 प्रेरणादायक साल पूरे कर लिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच करते हुए अधिकारियों को पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की। गोड्डा पुलिस ने राजाभेटा में छापेमारी कर 1 किलो 400 ग्राम गांजा और 76 पीस नशीला सॉल्यूशन बरामद किया है। मामले में तस्कर संदीप मंडल को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है। और पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी अनाज गोदाम में आज 5.5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुसने से हड़कंप मच गई। सूचना पर पहुंचे वनकर्मी मोहम्मद असरफुल शेख ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे
2: जी।
1: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, वॉइस ओवर डायरेक्टर
2: जी,
1: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
2: जी,
1: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
2: जी,
1: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
2: जी,
1: व्हाट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूँ।
2: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
1: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। When I was in Kashmir,
2: जी।
1: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना। रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
2: जी।
1: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था। और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
2: अच्छा।
1: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
2: जी,
1: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
2: जी।
1: वैसे वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
2: जी।
1: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
2: अच्छा।
1: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्पचर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज। हम बहुत छोटे छोटे थे।
2: अच्छा।
1: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
2: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से तो
1: मेरे, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
2: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
1: दोनों जहान तेरे

0: दोनों जहान तेरी।
1: क्या खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए, या
0: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था
1: जी।
0: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ए मेरे वतन के लोगों गाया था। मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने
1: जी जी।
0: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ए मेरे वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से जैसे बोलते ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा
1: जी।
0: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे
1: जी।
0: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में
1: जी।
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: का
0: रहने वाला है, या ये चेन्नई का रहने वाला है, या ये कलकत्ता का रहने वाला है
1: जी।
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे, बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे
1: जी।
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं, उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी बने हैं, और
0: रहे हैं, बिल्कुल।
1: जी बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब ये श्रोता हूं, मैं सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8 सुनूं, या एक और है 107. जैसे गोल्ड,
1: जहां जहां शहर बदलेंगे हमारे नंबर्स बदल जाते हैं, कि आपको अलग अलग शहर में अलग अलग दिखाई,
0: लेकिन मुझे इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं, और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब प्रसारण होता है
1: जी।
0: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए
1: जी। हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो अच्छा,
0: हम हमेशा साथ हैं, हम हमेशा साथ।
1: तो अब हम वापस आपके जीवन पे आ जाते हैं।
0: फिर मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर, वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था, जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल, अब भी है वो, जहाँ पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ
1: जी।
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने के लिए, लगाने के लिए, और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे प्रवीण सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी और कभी आकाशवाणी में होता था कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा
1: जी।
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया। छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था। फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं, तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या? तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
1: जी।
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
1: जी।
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेस करते थे। तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था कोई ना कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
1: जी,
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते
1: जी।
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे, तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते थे, उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो
1: निकल पड़े थे, मतलब
0: ऐसा था
1: भाग कि मैं, पड़े थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
1: जी।
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था, और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना, तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे, तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई थिंक ऑलमोस्ट टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा जब मैं दिल्ली आ गया था,
1: 20 ईयर्स का एज,
0: 19-20 साल की उम्र थी, तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहां भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में,
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा नहीं,
0: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है
1: जी।
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो प्रिपेयर भी करती रहती थी, मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था,
1: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं।
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है
1: जी।
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है
1: जी।
0: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला
1: जी।
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला
0: जी,
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो
1: जी,
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ
1: जी,
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा, ऐसा नहीं है। मुझे कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसे होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज वो नेचर से मिलती है
1: जी।
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के,
1: वो संगीत खरज की, का रियाज कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद्र सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती
1: है, मतलब बेस अच्छा होता है,
0: तो उसमें आप नीचे की तरफ
1: सा के बाद
0: नीचे आए नीचे की तरफ जितना जाएंगे
1: जी।
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: है तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या आ करके ही कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है
1: जी,
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको।
1: किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए?
0: कोई भी, जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा,
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है
1: जी,
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए
1: जी,
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं
1: जी।
0: जब आपको मालिक, क्योंकि मेरे

0: सोल है
1: जी,
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है, तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं
1: जी।
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी।
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया। तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते
1: खुद
0: हैं।
1: खुद के गुरु भी बन सकते हैं
0: खुद क्या, और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन है, वो वहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग
1: जी। तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप पहुंच सकते हैं। और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
0: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं
1: जी,
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही
1: जी।
0: तो हम बचपन में गए ना वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं। और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी।
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है
1: जी।
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना, करते करते उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में
1: जनवरी 40 साल हो गए तकरीबन मुंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं है उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहां दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, बॉम्बे जाना चाहिए आपको, बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष
0: जी। जी
1: अब वो है नहीं
0: जी,
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे उस
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और मेरी आंटी घर पे रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था,
0: भूल गए।
1: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय।
0: अच्छा,
1: आई थिंक दैट वॉज कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ।
1: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के, बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर। तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स। तो आई यूज्ड टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे।
2: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नुहरत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
1: श्रोताओ, एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
1: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओ कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
2: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
2: जी,
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
2: जी,
1: इसे आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
2: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
2: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
2: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
2: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
2: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
2: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
2: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
2: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
2: जी
1: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
3: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
4: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
3: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
4: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
3: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
5: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा।

0: से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
1: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आँख मिचौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
0: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
1: अच्छा, वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
2: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
1: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है? पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
0: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
1: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं?
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
0: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
0: डरो मत।
1: हाँ?
0: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
4: सुंदर, बहुत प्यारा,
5: सुंदर, बहुत ही सुंदर।
2: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
1: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
2: वो आगे बढ़ती रही, रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
4: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
0: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
4: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
0: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
4: अच्छा,
0: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
4: मैं चलती रहूंगी, हाँ मैं हमेशा चलती रहूं।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
2: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान, चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी

0: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
1: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे दोस्त हूँ ना तुम्हारे। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलेन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी।

0: に、ばに、
1: に、
0: はは、しゃばし、ばに、ばに、うん、
1: ば、
0: は、
1: に、
0: に、は、ば、に、
1: に、
0: एक बार फिर कोशिश करो हाँ
2: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी
3: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी
4: मिसेस केलर
5: जी
4: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है संगीत का आनंद भी लेने लगी है आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना
5: जरूर मैं अभी बजाती हूँ

0: तुम अच्छा पिया नो
1: शाबाश हेलो मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: इसके लिए
1: हेलो बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गई।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन आगामी दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के बड़े फैसले के बाद छात्र संगठनों ने यह निर्णय लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच करते हुए अधिकारियों को पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मॉनसूनी बादल कमजोर होकर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कल से राज्य के कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना है। और बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मिलन फिल्म का ये गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। लीजिए सुनिए, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एस वी बाला सुब्रमण्यम की।

इसी गीत के साथ इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम की 5:29 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के दने से प्रणाम जोहार और स्वागत है कार्यक्रम में। तो हम कार्यक्रम से जुड़ गए ही सभी ग्रामीण श्रोता और हमरा उम्मीद है कि आपने भी ये कार्यक्रम से जुड़ गए होती तो बतावा तोर हाल चाल कैसन हो, खेती बाड़ी के हाल चाल कैसन हो। देखा कि अब सावन के महीना चल रहे और देखा कि काम काज के महीना है। सभी किसान भाई बहन उम्मीद कर रही है कि अपन खेती बाड़ी के काम काज बेस्तरी से कर होती और देखा कि मौसम में जो खेती बाड़ी के है एक साथ साथ देखा कि एकदम पानी भी बढ़िया हो रहे हैं और जो खेत के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ऐसन में देखा कि मौसम में जो बारिश हो रहे है कभी धूप कड़ा हो जाए है तो कभी छांव हो जाए है तो ऐसन में का हो कि देखा तू घरा घरी देखवा कि अभी तबीयत भी बहुत बिगड़ रहे और देखा कि घर में एक जन के अगर बीमार पड़ रहे तो ओकर साथे साथे एक करके सब कोई बीमार पड़े। तो ऐसन में हमने के चाहे सचेत हो के अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देवे के और एकरा ध्यान देवे लगी सबसे ज्यादा जरूरी कि भाई अभी इतना पानी हो रहा है तो कहीं कुआं के पानी, चापा नल के पानी और बोरिंग के पानी पी रही थी है, तो वो भी कहीं भी बारिश के पानी मिल के आ रहे। तो हमने इनके चाहिए कि पानी के खौला के ओकरा ठंडा करके पिए ताकि कोई तरह के गंदा पानी शरीर के अंदर ना जाए और हमने स्वस्थ रहिए। और ऐसे ही करके देखा कि ना बासी हमने इनके खाए के चाहिए, बरसात में जल्दी बासी खाना खराब हो जाए है। और हमने इनके ज्यादातर देखा कि मौसम के अनुसार मतलब हमने इनके ढंग से रहे के चाहिए। और एकर साथे साथे कार्यक्रम में जुट गए लिए तो हम बता दिए कि आज हम कार्यक्रम में काका लेके आए लिए। तो आज हम बात करवे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, ओकर साथे साथे हम बात करवे कि सब्जी में फूल और फल कम लगे के का कारण है और एकर का हमने समाधान खोजिए। गीत नाद है मनोरंजन लगी, साथे साथे जरूरी संदेश भी है, मौसम के जानकारी, बाजार भाव और देखा कि अंत में हम बात करवे कि किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO ये किसान के की तरी से लाभ दे रही थी है। तो देखा सब्जी में जो सब्जी के पौधा है एकर में फल और फूल नए लगना ये बहुत ही आम समस्या है। ओकर मुख्य कारण है देखा कि परागण में कमी, अधिक तापमान, कभी कम तापमान, पोषण की कमी या फिर जिस पानी के संतुलन नहीं बनल रहना, कभी पौधा के ज़्यादा पानी मिल जाए है तो कभी एकदम सूखा रहे जेकरा चलते फूल जड़ जाए है और ओकर में फल नए लगो है। एकर भी मुख्य कारण है देखा कि जैसे कि परागण की कमी यानी कि अगर मधुमक्खी और कीट जो भी है वो बगीचा में बहुत कम आना जाना करतो तो जेकरा चलते भी फूल और फल कम लगो है। और बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंडा से भी फूल सूख जा है और गिर जा है। और एकर साथे साथे गलत खाद के चुनना यानी कि देखा नाइट्रोजन खाद ज़्यादा देवे से पौधा के पत्ती तो बढ़ो है लेकिन फल नहीं बढ़ो है। और सिंचाई के भी समस्या है, कभी पानी ज़्यादा हो जाए है तो कभी माटी पूरा के पूरा सूख जाए है। तो यही सब समस्या के कारण देखा कि फूल कम लगते और ओकर चलते फल भी कम लगो है। तो देख हमने इन कार्यक्रम में जुट के लिए तो आगे भी हम बात करवे। तो शुरुआत में कार्यक्रम में हम सुनाओ हुए प्यारा सा गीत और साथे साथे जरूरी संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो देखा, अभी हमने सुन लिए इतने बेस गीत और साथे साथे जरूरी संदेश भी। और गीत सुनने से पहले हम बात कर रहे लिए कि भाई NFSNM यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किसान के कैसे लाभ पहुंचा सके है, और एक मुख्य उद्देश्य है देखा कि चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन में बढ़ाना। और राष्ट्रीय खाद्य मिशन के मुख्य उद्देश्य के साथ देखा एक विशेषता भी है, उत्पादन में वृद्धि, एक और उन्नत तकनीक और बीज जो ऐसा चुनाव करिए जेकरा से बहुत ज़्यादा पैदावार हो, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाना है, ताकि अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बढ़ाए लगी हमने इनके ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद के प्रयोग करना है, और ओकर में कम से कम रासायनिक खाद के प्रयोग करना है। और एक और भी मुख्य उद्देश्य है कि किसान के आय में वृद्धि करना है, ताकि उनका आर्थिक स्थिति सुधर जाए, और कभी बाढ़ हो, कभी सूखा हो, इस सब आपदा के कारण किसान भाई बहन जो भी खेती बाड़ी करती है कभी सूखा से गुजरल पड़ो है, तो कभी खेत में ज़्यादा पानी होने से पूरा फसल बर्बाद हो जाए, तो एकरा लगी भी आय की वृद्धि करना भी और ओकर आर्थिक स्थिति को सुधारना भी NFSNM यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य उद्देश्य है। और एकर साथे साथे देखा कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, एकरा में किसान भाई बहन के जितना हो सके उनका मतलब फायदा कराना है, और आगे चल के उन लोग के हर तरह से मदद करना है। और जैसे कि कार्यक्रम में हमने हर समय लेके आवो ये जानकारी भलर भेंटवाता, तो ऐसे में आज हम लेके आए ही एक सफल महिला किसान हथी जो अरहर, सोयाबीन और मूंगफली के उन्नत खेती कर रही थी। तो बिना कुबेर कहले हम ये जानकारी सुनावे ही है सभी ग्रामीण श्रोता के, और ये हमने इनके जो जानकारी सुनावे थी ये है रेणु देवी, तो सुनल जाए बिना कुबेर कहले।
2: श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे एक सफल महिला कृषक जो बहुत बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी का काम कर रही हैं, तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हमें बताइए कि आपका नाम क्या हुआ?
3: मेरा नाम रेणु कुमारी है।
2: हाँ, रेणु कुमारी जी, आप क्या क्या चीज़ का खेती अभी कर रही हैं?
3: अभी तो हम अरहर, सोयाबीन और मूंगफली का खेती कर रहे हैं।
2: अच्छा, अरहर और सोयाबीन और मूंगफली की खेती कर रही हैं, तो ये कितने ज़मीन में खेती कर रही हैं?
3: वही 2.5 से 3 बीघा में तीनों चीज़ का,
2: मतलब थोड़ा थोड़ा करके तीनों चीज लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि तीनों चीज की खेती करिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि अरहर की जो आप खेती कर रहे हैं, तो इसमें मतलब खेती की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं?
3: पहले तो हम लोग खेत को उपजाऊ बनाते हैं, जिसके लिए जुताई का काम करते हैं, मिट्टी को हल्का करते हैं, और जिससे पानी निकल जाए वैसा ही ज़मीन का उपयोग करते हैं।
2: हाँ।
3: ताकि खेत में पानी नहीं रहे और फसल खराब ना हो।
2: हाँ, कहे कि देखिए अभी मौसम है बरसात का, तो जहाँ पानी जमेगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, पेड़ सड़ने गलने का क्या नौबत आ जाएगा, इसलिए निकासी रखना बहुत जरूरी है ना। तो इसकी खेत की तैयारी करने से पहले मिट्टी की जांच करवाती हैं?
3: जी हाँ, करवाते हैं।
2: अच्छा, तो मिट्टी की जांच करवा लेने के बाद पता चल जाता है कि भाई मिट्टी में क्या है नहीं है, उस हिसाब से फिर मतलब खाद वगैरह देते हैं। तो ये जो बुआई करते हैं अरहर की, तो वो कितनी दूरी में करते हैं?
3: कम से कम 75 से 90 सेंटीमीटर हर पौधा के बीच का दूरी रहता है, 25 से 30 सेंटीमीटर मान के चलिए, उसी हिसाब से हम लोग अरहर को का बीज लगाते हैं।
2: अच्छा, तो ये जो बीज लगाते हैं तो बीज का उपचार करते हैं?
3: हाँ हाँ, बीज का उपचार भी होता है,
2: क्योंकि बीज उपचारित रहेगा तो सारा का सारा पौधा निकल जाएगा बीज का, है ना? बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है कि बीज उपचारित करके आप ये अरहर की खेती करते हैं। तो इसके लिए आप सिंचाई वगैरह करते होंगे कितने दिनों पर?
3: ऐसे तो अभी बरसात का समय है तो मुख्यतः पानी हम लोग को बारिश से ही मिल जाता है, लेकिन जब नमी हम देखते हैं कि कम होने लगता है तो फिर हम लोग उसमें बीच बीच में पटा देते हैं खेत को।
2: हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये अरहर जब उसमें फली आने लगता है तो उस फली के कीट से बचाने का भी कुछ करते होंगे?
3: समय पे उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, जिससे कि पौधा हम लोग का खराब नहीं हो
2: और फली भी बचे।
3: फली भी बचे।
2: तो जब ये फली जब थोड़ा पीला होने लगता है, पकने लगता है, तो वो पीला होने से पहले तोड़ते हैं कि पकने के बाद तोड़ते हैं?
3: हाँ, जब पौधा मतलब बीज सब पकने थोड़ा लगता है तो हल्का हल्का उसके गिर अपने झड़ने से पहले हम लोग उसको तोड़ के रख लेते हैं
2: ताकि ऊपर बिखर ना जाए,
3: बर्बाद
2: ना हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके आप बता रहे थे कि ये सोयाबीन के साथ मूंगफली की भी खेती कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका समय कब रहता है मूंगफली लगाने का?
3: वही समय रहता है जून से जुलाई के बीच में।
2: हाँ, मतलब इसी समय का?
3: इसी समय, तीनों फसल का समय एक ही है,
2: इसीलिए साथ
3: में तीनों का इसलिए हम लोग
2: करते हैं,
3: खेती कर लेते हैं।
2: हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रबी फसल मूंगफली खरीफ फसल में ये खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं?
3: इसको भी हम लोग खेत को जोताई करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं और जो गोबर का सड़वा खाद होता है उसको मिट्टी में मिला लेते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसका भी समय कब रहता है?
3: जून से, वही जून, आधा जून से लेके जुलाई दूसरा सप्ताह तक हम लोग पूरा तरह से बीज का बुआई कर लेते हैं।
2: बिल्कुल, तो ये मूंगफली की जो बुआई करते हैं तो कितनी दूरी में करते हैं?
3: हम लोग मूंगफली वैसे ही क्यारी बनाते हैं और हर क्यारी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसके बीज को लगा देते हैं।
2: बिल्कुल, ताकि वो मतलब फैलने का जगह बने। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मूंगफली में जो फूल आता है, तो मूंगफली में जो फूल आने लगता है तो साथ में देखिए पौधा के साथ बहुत खर पतवार भी आ जाता है, तो ये खर पतवार को नियंत्रण आप किस तरह से निकाई गुड़ाई करते हैं?
3: इसके लिए हम लोग हर 20-25 दिन पर इसका निराई गुड़ाई करते हैं। जब भी देखते हैं कि खर पतवार आने लगता है तो 20-25 दिन में उसको अच्छा से निकाल उकाल देते हैं ताकि मिट्टी हल्का रहे।
2: हाँ हाँ,
3: और फसल हम लोग का ठीक से।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितना लगाते हैं, कितनी उपज हो जाती है?
3: वही कम से कम 50-60 किलो जैसा हो जाता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ सोयाबीन की खेती के बारे में बोल रहे थे, तो ये सोयाबीन की खेती एक तरह से तिलहन फसल है, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है। तो रेणु जी बताइए कि इसके लिए कैसा मिट्टी होना चाहिए और इसको उपजाने के लिए?
3: इसके लिए हम लोग को दोमट मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है और इसको भी वही निकासी वाला जमीन हम लोग देखते हैं जिसमें जल जमाव नहीं हो, निकासी वाला जमीन हम लोग चुनते हैं जिससे कि फसल अच्छा से उग सके।
2: बिल्कुल, और इसका भी समय इसी समय रहता है?
3: हाँ, इसका भी जून से जुलाई के बीच में ही हम लोग करते हैं।
2: और इसमें बीज जो है वो किस तरह से लगाते हैं?
3: इसका दूरी हम लोग 4-7 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि हर फसल को जगह मिले खड़ा होने का।
2: और इसमें खाद वगैरह क्या डालते हैं?
3: यूरिया डालते हैं, फास्फेट डालते हैं, DAP बीज, ये सब जो अभी वही अलग अलग तरह का खाद हम लोग खेत में डालते हैं।
2: बिल्कुल, तो इसको खाद और मतलब सिंचाई वगैरह किस तरह से होता है, सिंचाई करते हैं इस मौसम में कितना ज़रूरत पड़ जाता है सिंचाई का?
3: इसका भी सिंचाई हम लोग नमी को देखते हुए ही करते हैं। अगर जैसे बरसात के कारण मिट्टी में नमी रहती है तो फिर हम लोग जब मिट्टी में नमी रहता है तो हम लोग नहीं करते हैं, पानी बरसात का मौसम है तो पानी तो मिल ही जाता है, जब देखते हैं हम लोग की नमी नहीं है, खेत सूखने जैसा होता है, तब हम लोग इसका पानी पटाते हैं हम लोग अपना खेत
2: में। बहुत अच्छी बात है कि सोयाबीन की अभी बहुत मांग है, देखिए इसका अच्छा मतलब दाम भी मिलता होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तो बहुत अच्छी बात है अरहर सोयाबीन और मूंगफली की खेती आप कर रहे हैं, इसमें और अच्छा से और कैसे कर सकते हैं
3: खेती? अधिक मुनाफा कमाने अरहर और मूंगफली का सह खेती करते हैं, उन्हें मिला जुला के करते हैं, दोनों फसल को कतार में लगाते हैं एक अनुपात में, और अरहर को पंक्ति के बीच ज़्यादा जगह, मूंगफली को बोते हैं, अरहर और मूंगफली को ज़्यादा लगाते हैं, जिसमें दोनों फसल को पूरा पोषण मिलता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती जाती है।
2: तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक ही पंक्ति में दोनों फसल लग जाता है तो एक बार में दो मुनाफा होता है, और साथ में देख रेख भी एक साथ दोनों का हो जाता है, और समय की भी बचत होती है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप इतने बड़े पैमाने पर अरहर मूंगफली और सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। तो आप कुछ अपने महिला कृषक को कुछ देना चाहिएगा संदेश कि वो भी इस तरह का खेती करें?
3: हाँ, हम तो कहेंगे कि हर किसी को अपना करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भी बढ़े और हम लोग महिला समाज भी सशक्त हो, अपने आप आत्मनिर्भर बन सके।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी सुनकर सभी ग्रामीण महिला श्रोता प्रेरणा स्रोत वो भी इस तरह से खेती का काम करेंगी। तो आपने कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो देखा अभी हमने सुन लिए भेंट वार्ता अरहर सोयाबीन मूंगफली की उन्नत खेती के बारे में बतावे थल थी रेणु देवी। तो उम्मीद करें कि जानकारी सुन के सभी किसान भाई बहन लाभ उठाए थी और वो भी इस तरीके से अरहर सोयाबीन और मूंगफली के खेती करती। तो देखा कि जानकारी सुनने से पहले हम बात करें ली कि भाई SNM यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मतलब पोषण के मिशन के बारे में हमने बात कर ली। एक मुख्य उद्देश्य है कि भाई उत्पादन में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, किसान के आय के बढ़ाना, ताकि सभी किसान के आर्थिक स्थिति सुधर सके। अब हम बात करवे कि FPO जेकर उद्देश्य है किसान खाद्य बीज और मशीन सस्ता दाम पे किसान सबके उपलब्ध कराना है और बिचौलिया के हटाकर फसल के बाजार में उचित दाम पर बेचना है। और ये जो FPO के विशेषता है भाई सामूहिक सौदाबाजी, एकर में किसान मिलकर खाद बीज और कीटनाशक थोक भाव में सस्ता दाम पर खरीद सके और बिचौलिया से मुक्ति, किसान अपन उपज सीधा बाजार में ले जाए, फूड प्रोसेसिंग के यूनिटी के पास ले जाए और मतलब बिचौलिया के कारण उन लोग के जो नुकसान होले वो नुकसान से बच सके। और एक में वित्तीय सहायता भी सरकार देव हथी। एक में देखा कि FPO में योजना के बढ़ावे लगी कम से कम 10,000 नया FPO बनावे में और ओकरा में शुरुआती जो है वित्तीय सहायता की गारंटी है कि ओकरा में उन लोग के ऋण जरूर मिलते हैं। और एकरा में भी ये देखा कि और भी ज़्यादा इस संस्था के बढ़ावे लगी, देखा कि मैदानी इलाका में 300 सदस्य होए के चाहिए और पहाड़ी इलाके में 100 सदस्य किसान के रहे के चाहिए। तो देखा कि तरी से सभी योजना है जो किसान भाई बहन के फ़ायदा लगी चलावल जा रहे ले। तो सारा योजना के उम्मीद करें कि सभी किसान भाई बहन जानकारी लेके सभी योजना के लाभ उठा सके। और अब हम बात करवे भाई कि बाजार भाव। तो देखा आज के बाजार भाव है लाल आलू 20 से 25 रुपया प्रति किलो, सफ़ेद आलू 10 से 15 रुपया किलो, प्याज है 30 से 35 रुपया किलो, फूल गोभी है 40 से 45 रुपया किलो, पत्ता गोभी है 15 से 20 रुपया किलो, पटल है 40 से 45 रुपया किलो, भिंडी है 35 से 40 रुपये किलो, नेनुआ है 25 से 30 रुपये किलो, कद्दू है 25 से 30 रुपए किलो, हरा मिर्च है 80 से 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च है 60 से 80 रुपए किलो, गाजर है 35 से 40 रुपए किलो, बीट है 40 से 45 रुपए किलो, सेम है 25 से 40 रुपए किलो, और फ्रेंच बीन है 35 से 40 रुपए किलो, मूली है 20 से 25 रुपए किलो, धनिया पत्ता है 80 से 100 रुपए किलो, अदरक है 70 से 90 रुपए किलो, खीरा है 20 से 25 रुपए किलो, टमाटर है 30 से 25 रुपए किलो 35 रुपए किलो, लाल साग और पालक साग है 25 से 30 रुपए प्रति किलो। और आज के मौसम है, अधिकतम तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता है 18%। और पूर्व अनुमान कल के मौसम की जानकारी है 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम और न्यूनतम है 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता है 78%। तो ये है मौसम की जानकारी। तो देखा कि इस तरह से सभी किसान भाई बहन अपन खेती बाड़ी के बढ़िया से करती, और देखा कि जैसा कि सावन के महीना है और ये मौसम में देखा कि बहुत पर्व त्यौहार सोमारी सब ही रहो है, और किसान भाई बहन सब अपन खेती बाड़ी के काम बढ़िया से करके पूजा भी बढ़िया से करो होती। और देखा कि अब आवे वाला समय में अब रक्षाबंधन के भी तैयारी भी किसान भाई बहन सब उम्मीद करो हथी, और उम्मीद करे कि सभी के कामकाज बेस्तरी चले और सारा पर्व त्यौहार बढ़िया से चले। तो कार्यक्रम में बातचीत करते करते समय हो गए जाए के, तो कार्यक्रम खेती बारी से ममता के अनुमति द जोहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रांची में पिछले 26 दिनों से जारी अपने आंदोलन को फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। झारखंड भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेताओं ने झारखंड से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पाकुड़ की विधायक निशात आलम ने आज 4,96,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पलाश मार्ट भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पलाश मार्ट महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने सखी मंडलों के बीच 62,60,000 रुपए का ग्रांट और 63,00,000 रुपए की ऋण राशि का चेक वितरित किया। गिरिडीह की बगोदर पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े मिथिलेश यादव उर्फ छोटू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि मामले में एक होटल के मालिक महेश रजक और उसके स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। और पंजाब के लुधियाना में आगामी 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लातेहार के जयदीप उरांव और आकाश उरांव का चयन हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:02:25 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम दोस्तों का आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रानी। कैसे हैं दोस्तों, सभी अच्छे हैं ना? चलिए अच्छी बात है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, यही हम कामना भी करते हैं। दोस्तों बारिश काफ़ी हो रही है, बरसात

0: जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए। हम हमेशा यही कहते आए हैं कि हर मौसम का अपना एक अलग मजा होता भी है, पर हर मौसम में हमें सतर्क भी रहना चाहिए। थोड़ा सा हम यदि भीग गए तो हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बासी खाना यदि खाते हैं तब भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। पानी को भी हमेशा कहते हैं फिल्टर करके पीना है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें इन दिनों, तो काफी स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे। फिलहाल हम आपके साथ सुनते हैं ये गाना, उसके पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, हर साल 19 अगस्त को विश्व छायांकन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का बहुत महत्व बढ़ गया है। एक वक्त था जब कुछ ही लोगों के पास कैमरा हुआ करते थे, लेकिन अब हर इंसान के हाथ में कैमरा है। जब कैमरा बहुत कम लोगों के हाथ में होता था, तब सिर्फ खास पल ही कैप्चर करने के लिए होते थे, लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ गया है। लोग लम्हों का आनंद बहुत कम लेते हैं, उससे अधिक फोटो कैप्चर करते हैं। यह कहना गलत नहीं हुआ कि कैमरे की जगह मोबाइल ने ले ली है। हालांकि इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य है दुनिया भर की फोटोग्राफर्स को प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा करते हैं। सन 1893 की बात है, फ्रांस में डागोरोपाइट्स प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इसे दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार दो दोस्तों ने मिलकर किया था। इसका आविष्कार लुइस डोगर और जोसेफ ने 19 अगस्त 1839 को डागोरोपाइट्स प्रक्रिया की आविष्कार की घोषणा की और बाद में पेटेंट भी प्राप्त किया। और इसी दिन को याद करते हुए 19 अगस्त को विश्व छायांकन दिवस मनाया जाता है। और भी जानकारी की बातें हम आपसे करेंगे। विश्व मानवता दिवस, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी दे दें। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन साहसी लोगों की याद दिलाता है जो युद्ध, आपदा और संकट के समय अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के इंसानों की सेवा करना सबसे पवित्र काम है। मानवता और दूसरों की मदद, इसके महत्व के बारे में भी हम थोड़ी बात करते हैं आपसे। सच्चा सुख, दूसरों के काम आने से मन को शांति और सच्ची खुशी मिलती है। समाज का निर्माण, मदद की भावना से समाज मजबूत और सुरक्षित बनता है। बिना भेदभाव की सेवा इंसानियत सिखाती है। धर्म या जाति से ऊपर उठकर सबकी मदद करे। प्रेम और एकता, सहयोग से लोग आपस में जुड़ते हैं और नफरत खत्म होती है। तो अब इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

0: बातचीत हो रही है रोशन राज, इनसे आज बातचीत करते हैं कि खेल में इनकी अभिरुचि कैसे हुई और खेल में अभी तक क्या कुछ इन्होंने किया है और आगे क्या करना चाहते हैं। रोशन राज जी, सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
1: सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका धन्यवाद।
0: अगर हम खेल की बातचीत करें तो खेल में आपकी अभिरुचि जो है वो कब से हुई?
1: मेरा रुचि तो खेल में बचपन से है। पहले बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन फिर बास्केटबॉल मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर तब से मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ।
0: तो इसमें कौन कौन सी स्पर्धा जिसमें आपने भाग लिया और उसमें आपका प्रदर्शन किस तरह का रहा? यहाँ
1: पहले तो मैंने इंटर स्कूल खेला, फिर CBSE खेला, क्लस्टर खेला, जोनल खेला।
0: CBSE में आपका मुकाबला जो है वो कहाँ से, किस राज्य से हुआ था?
1: इसमें बहुत सारे स्कूल आए हुए थे, पूरे झारखंड और बिहार से सभी स्कूल। ये अंडर 17 का था जिसमें मैंने खेला था, तो इसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद फिर आपने जैसा कि बताया कि इसके साथ साथ जो क्लस्टर और जोनल जो है उसमें भी बास्केटबॉल में हिस्सा लिया और उसमें आपका बेहतर प्रदर्शन रहा। और खेल के साथ साथ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो क्या खेल से करियर की तरफ बढ़ा जा सकता है? संभावनाएं हैं खेल के माध्यम से?
1: किसी भी फील्ड में आप जाइएगा, पढ़ने में जाइएगा, खेलने में जाइएगा, किसी में भी जाइएगा, आपको तो खेल हर जगह हेल्प करेगा। अब अगर आप खेलने में जाना चाहते तो इतना सारा चीज है, आप टीचर बन सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स मैन बन सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका खेल बहुत हेल्प करेगा, आपका माइंड फोकस रहेगा हमेशा, और खेल से आपको बहुत सारा क्वालिटीज मिलेगा, आपको आपका बिहेवियर अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, सभी तरह का ऑलराउंडर एस्पेक्ट में हेल्प करेगा स्पोर्ट्स।
0: खेल के साथ साथ कैसे पढ़ाई को मैनेज करते थे? मतलब खेल में अगर आपने समय दिया तो घर जाकर फिर पढ़ाई कैसे कर पाते थे? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि खेल के बाद थक जाते हैं, घर में उतना पढ़ाई शायद वो नहीं कर पाते, तो कैसे आप मैनेज करते हैं खेल और पढ़ाई के बीच?
1: टाइम मैनेजमेंट तो करना सीखना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो वो दिन भर तो नहीं पढ़ सकता, और वो खेल रहा है तो दिन भर तो नहीं खेल सकता। तो एक्सट्रीम किसी चीज का अच्छा नहीं होता, आपको सब चीज मैनेज करके चलना पड़ेगा और हर एस्पेक्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट आपको अपना खुद करना पड़ेगा। अगर आप टाइम को मारेंगे तो कल टाइम आपको मारेगा।
0: बिल्कुल सही। खेल और पढ़ाई के बीच में एक आपने समन्वय स्थापित किया कि अगर हमको पढ़ाई करना है तो हम इतना समय दें कि हम पढ़ाई में भी अपना बेहतर कर पाए, उसी तरह से खेल में भी आपने इतना समय दिया, सतत प्रयत्न किया, जिसका ये प्रभाव हुआ कि आप खेल में भी अच्छा रहे और इसके साथ साथ पढ़ाई में भी अपना आपने बेस्ट रिजल्ट किया। अभी भी आपने अच्छा मतलब रिजल्ट किया और आगे भी अच्छा ही रिजल्ट करेंगे। खेल में भी आप अच्छा हैं और पढ़ाई में भी अच्छा हैं, इसके साथ साथ है कि आलस भी नहीं है, खेल के साथ साथ जो है माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो जो भी आप पढ़ते हैं वो कम से कम समय में उसको आप अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर सकते हैं, मतलब आपके जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो जो है दूसरे लोगों के बनिस्पत जो है वो बढ़ जाती है, क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, खेलने से तो अगर जैसे आप दिन पढ़ रहे 3-4 घंटा पढ़े तो आपका दिमाग लगातार काम तो करेगा नहीं, तो आपको बीच में रेस्ट चाहिए, तो आप उसमें खेल लीजिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होगा, और फिर अगर जब आप अगली बार पढ़ने बैठिएगा तो आपका दिमाग ज्यादा फोकस होगा और आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते सब चीज, तो इसमें हेल्प करेगा स्पोर्ट्स।
0: रोशन राज जी, आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना बेहतर आने वाले कल को बेहतर देखना चाहते हैं, बेहतर करियर के निर्माण में लगना चाहते हैं और खेल कूद के साथ साथ वो पढ़ाई में अपना बेहतर कर सके, अपना बेस्ट दे सके, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए आपके नजरिए से?
1: मुझे लगता है कि पहले तो आपको अपना ये टाइम टेबल अच्छा से बनाना पड़ेगा, और ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जो आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो आपको लगता है आप सही में फॉलो कर सकते हैं, ऐसे नहीं मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम 8 घंटा लिख लिए कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे और पढ़ 2 ही घंटा रहे। आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही लिखिए, और किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करिए, आप जो अपना कर सकते कैपेबिलिटी है आपका उससे थोड़ा बढ़ के करिए, लेकिन रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जो आप सही में फॉलो कर सकते हैं, और फिर आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे थोड़े दूर रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और आपको नहीं कहना सीखना पड़ेगा, अगर आपको मान लीजिए कोई दोस्त बुला रहा है और आपको लगता है कि अभी मेरे पढ़ने का समय है तो आपको कहना पड़ेगा हम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं कि अगर दोस्त बुला रहा है तो नहीं, अब दोस्त बुला रहा है तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अभी मेरा खेलने का समय है तो हम खेलेंगे, खेलते समय बस खेलना है, उस समय ये नहीं सोचना है कि अभी हमको घर जाके ये करना है ये करना है, खेलते समय बस खेलने पे ध्यान होना चाहिए, पढ़ते समय बस पढ़ने पे ध्यान होना चाहिए, और जब आप दोस्त के साथ घूम रहे तो फिर आप ये मत सोचिए कि अभी मुझे घर जाके पढ़ना है, आप उस समय पूरा अच्छा से मस्ती कर लीजिए जितना करना है, फिर जब पढ़ रहे तो फिर पढ़ते समय ये नहीं सोचिए कि अभी मुझे दोस्त से मिलने जाना है या खेलने जाना है, पढ़ते समय बस

0: पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेलते समय खेल पे ध्यान दीजिए, एक बार में एक ही चीज करिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी काम करते हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ कीजिए तो सफलता जो है आपको एक दिन जरूर मिलेगी। पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसके लिए मतलब आप किनको अपना क्रेडिट देना चाहेंगे, किनके सहयोग से आप खेल में अब तक इतना अच्छा किया और आगे भी करेंगे अगर मौका मिला तो?
0: अभी तक तो हमारे स्कूल में बास्केटबॉल टीचर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और हमेशा मतलब स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट किया और ऐसे पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट किया और घर में सब सपोर्ट तो करते ही हैं मुझे खेलने में और पढ़ने में। मतलब कभी मुझे रोका नहीं गया खेलने के लिए कि अभी तुम खेल क्यों रहा है, एग्जाम है या कुछ। उन्हें पूरा भरोसा है मुझ पे कि मैं कर लूंगा मैनेज।
1: आपने घर के लोगों का भी भरोसा जीता, घर के लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है जो भी कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, सोच समझ कर कर रहा है और घर से भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि आप पढ़ाई में भी अव्वल हैं और खेलकूद में भी हैं। जो अभिभावक तो अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीदें लगा रखते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ करके बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो उनमें कैरियर थोपना क्या ये अच्छा है?
0: नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। और हर कोई जैसे IITian नहीं हो सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई IAS नहीं बन सकता।
1: हर छात्रों का
0: अलग है। जैसे अगर किसी को सिंगिंग का है तो अब उसको सिंगिंग करवाइए, अब अगर उसको IIT का पढ़ाइएगा तो अब थोड़ी होगा उससे। जैसे अगर IIT का तैयारी करते रहता सचिन तेंदुलकर तो उससे नहीं होता। अब वो क्रिकेट खेलना चाहता था तो क्रिकेट खेलने पे ध्यान दिया और आज इतना बड़ा नाम है। तो जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो करे तो और अच्छा करेगा।
1: हर छात्र के अंदर एक छुपी हुई अलग प्रतिभा होती है, जरूरत है उसको संवारने की, उसको निखारने की, तभी वो बेहतर कर पाएगा। तो और ये अभिभावक का फर्ज भी बनता है, हर बच्चे जो है वो किसी न किसी तरह से दूसरे से भिन्न होते हैं, तो जो छात्र हैं उनमें छिपी हुई जो प्रतिभा होती है वो अलग होती है, तो उस प्रतिभा को संवारने और निखारने की जरूरत है और उनको थोपना बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम यही काम करो। बच्चों को देखिए कि वो क्या पसंद करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, अगर हम उनके चॉइस से चलें तो सफलता जरूर इसलिए मिलेगी कि वो पूरे खुशी के साथ और पूरे मन लगाकर उस क्षेत्र में वो तैयारी करें जिसमें उनकी अभिरुचि है, तभी वो एक दिन आगे बढ़ेंगे, एक सच्चे नागरिक बनेंगे और साथ ही साथ अपने माँ बाप का अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो रोशन राज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपना बहुमूल्य और बेशकीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: सभी को, मेरा नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में भी युवा कर सकते हैं अपना करियर का निर्माण। भेंट वार्ता करते रोशन राज, भेंट करता थे प्रमेंद्र कुमार मिश्रा। तो इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:54 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारी रांची केंद्र से।

0: वाले, कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल

0: बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
1: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में परीक्षा रद्द होने पर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सचिवालय में भारी हंगामा, तो दूसरी ओर रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से जारी आंदोलन 2 महीने के लिए किया स्थगित। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। राज्य के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में मौसम साफ होने की जताई संभावना। और बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति को सराहा। और अब समाचार विस्तार से। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।
5: उनके पास भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने मामला को टिल्ड कर दिया सीजीएल रद्द। उनको मैं भी संदेश देना चाहता हूँ, आप न्यायालय में हारे और भीड़ तंत्र के द्वारा दबाव बनाकर उसमें जो भी लोग थे परीक्षार्थी, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग घुस गए और उनके आंदोलन को भ्रमित कर सरकार पर दबाव बनाकर उन्होंने हमारे नियुक्ति को रद्द कराया है। इसको हम लोग लेकर वापस रहेंगे।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रांची में पिछले 26 दिनों से जारी अपने आंदोलन को फिलहाल 2 महीनों के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने परीक्षाओं में सुधार और रिफॉर्म से जुड़ी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। प्रेस वार्ता में छात्रों ने स्पष्ट किया कि यदि 2 महीने के भीतर उनकी अन्य सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे पहले से भी बड़ा आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे।
6: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने आंदोलन को सफल करने में लगाए। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना कम समय में इतना बड़ा निर्णय ले लिए, जिससे पूरा देश देख रहा है और हमको लगता है आज पूरे भारत में इतना बड़ा फैसला कोई नहीं लिया होगा।
4: झारखंड भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेताओं ने झारखंड से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और रविंद्र राय सहित भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो स्थित चिन्मय विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुई। इस ऐतिहासिक और खास अवसर पर उन्होंने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के योगदान को सराहते हुए कहा कि संस्थान ने युवा मस्तिष्कों को सही दिशा देने और उन्हें संवारने के 50 प्रेरणादायक साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।
7: आज चिन्मय विद्यालय बोकारो की स्वर्ण जयंती, 50 वर्ष पहले बोकारो चिन्मय विद्यालय के नाम से छोटे से स्वामी का पौधा था। किसी संस्था का प्रभाव इस बात से तय होता है उसने राष्ट्र को कितने विजनरी और जिम्मेदार नागरिक थे, और इस कसौटी पर चिन्मय विद्यालय देश का बहुत बड़ा रहा है।
4: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिससे देश की खनिज क्षमता बढ़ेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ जिले में लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों। श्री कुमार ने मतदाताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और 24 अगस्त से होने वाली जन सुनवाई की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: अभी मतदाता सूची का प्रदर्शन कार्यक्रम सभी जगह पर चल रहा है, उसका लेकर वो नो मैपिंग का हियरिंग सुनवाई होगा अभी 24 अगस्त से। उसका लेकर हम लोग कितना नो मैपिंग केसेस है वो डिस्क्रिपेंसी है, उनके पास कागज अवेलेबल नहीं है, उसके बाद उनका क्या प्रिपरेशन है उसका लेकर एक बार एक सैंपल सर्वे में आया, अभी उसी के नाम हो गए।
4: गिरिडीह जिले की बगोदर थाना पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े मिथिलेश यादव और छोटू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में घाघरा स्थित एक होटल के मालिक महेश रजक और उसकी स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस मानसूनी वर्षा के कारण रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध पतरातु डैम का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि अगले 12 घंटों में झारखंड के ऊपर से मानसूनी बादल धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, जिससे कल से राज्य के कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति की सराहना की।
8: 2014 में जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने खेल के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। शरीर ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। झारखंड की पहचान तीरंदाजी में हो रही है अच्छे ढंग से और यहाँ की खासतौर से लड़कियों ने अच्छी पहचान बनाई है।
4: पंजाब के लुधियाना में आगामी 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लातेहार के जयदीप उराव और आकाश उराव का चयन हुआ है। जयदीप व्यक्तिगत स्पर्धाओं और आकाश मिश्रित रिले दौड़ में भाग लेंगे। जिला खेल पदाधिकारी अविनाश कुमार त्रिपाठी और खेल संघों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में परीक्षा रद्द होने पर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सचिवालय में भारी हंगामा, तो दूसरी ओर रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से जारी आंदोलन 2 महीने के लिए किया स्थगित। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, राज्य के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में मौसम साफ होने की जताई संभावना। और बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। राज्यपाल ने वर्ष 2014

0: यात्रा के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति को सराहा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आज कर

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: खान खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में लातेहार जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। जिला कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ शहर से लेकर गांव तक आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तैयार की है। मौके पर उपस्थित राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम ने कहा कि
2: भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं है और उसकी सोच ये है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि वो सरकार डिफेम हो जाए, उसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो कम हो जाए और एक तरह से कहें तो राज्य की जनता को जमीन हमारी, पर्यावरण का मार हम लोग झेल रहे हैं, धूल हमारे लोग खाएं, पानी हमारा खर्चा हो, जमीन हमारी बर्बाद हो और उसका लाभ भारत सरकार को मिले, ये कहते उचित नहीं है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर सदन तक इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे।
1: आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ साहदेव ने कहा कि
3: केंद्र सरकार के द्वारा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक जो लाया गया 2026, उसके जरिए राज्य सरकार को अपंगु बना दिया गया है। जो रॉयल्टी शेष के रूप में, अंशदान के रूप में राज्यों को मिलता था, उसको आप पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार अपने अधीन कर लिया है और यह काला कानून जो थोपने का काम किया है, झारखंड के लोग और झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता इस काले कानून को कतई स्वीकार नहीं करेगी और यहां से एक छटाक भी खनिज संपदा हम लोग दूसरे प्रदेशों में नहीं जाने देंगे।
1: भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले लातेहार जिले के मजदूर आंदोलन की राह पर हैं। समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में मजदूरों ने सरकार के मजदूर विरोधी नीति पर चर्चा की। विभिन्न मांगों के समर्थन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि
4: न्यूनतम मजदूरी कम से कम 30,000 होना चाहिए, सभी कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए, जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किया जाए।
1: लातेहार जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
5: तांबर तिलका मांझी की धरती झारखंड भी आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रही। आज मैं उन वीर शहीदों को और उन पुलिस व सैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा में अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। आजादी का मतलब केवल तिरंगा फहराना नहीं है, आजादी का असली मतलब है कानून का राज्य, सबों को बराबर का न्याय एवं हर नागरिक का सुरक्षित जीवन हो। और इस संकल्प को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लातेहार पुलिस पूरे जिला के लिए कर रही है।
1: भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने केंद्र की पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति किसानों के लिए नए अवसर लेकर आई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एड्सवेल पेश है कार्यक्रम झनकार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना, आवाजें हैं अलका याग्निक और साथी की।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार की आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। लीजिए सुनिए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आंधी फिल्म का ये गाना, आवाज किशोर कुमार की है।

आप सुन रहे थे आंधी फिल्म का ये गाना। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अब लीजिए सुनिए राजा फिल्म का गीत, अंकयानी और उदित नारायण की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे कसूर फिल्म का ये गाना, आवाजें थी अलका याग्निक और साजी की। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। क्या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:45 हुई हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानूनी सलाह। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार है अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा और भेंट करता है अंजलि सिन्हा।
1: श्रोताओं, हम लोग हमेशा यह कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन हर क्षेत्र में समानता नहीं कर पाते, खासकर धन संपत्ति के मामले में। अपने बेटे को ही सारी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं। उन्हें हमेशा पराया धन, पराए घर की धरोहर ही मानते हैं, जबकि संविधान के अनुसार समता का मौलिक अधिकार लागू है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट रांची के वकील श्री मनोज कुमार सिन्हा जी से, जो पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार के बारे में बताएंगे। तो मनोज जी, आपका हमारे इस कानूनी सलाह कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि पैतृक संपत्ति क्या है।
2: पैतृक संपत्ति पिता दादा या परदादा से मिली हुई संपत्ति को ही माना जाता है। वैसे तो बच्चा जन्म से ही उत्तराधिकारी हो जाता है। विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। पूर्व की संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है, उसे ही पैतृक संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति का वजूद केवल हिंदू परंपरागत विधि में 17 जून 1956 से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी होने के उपरांत नई पैतृक संपत्ति अस्तित्व में आना असंभव हो चुका है। इस कारण जो भी संपत्ति इस तिथि के पूर्व मिली किसी पुरुष को अपने पिता दादा या परदादा से उत्तराधिकार में, वही पैतृक संपत्ति है।
1: अच्छा, ये तो आप बता दिए कि पैतृक संपत्ति क्या है, और अब ये बताइए कि पैतृक संपत्ति कैसे प्राप्त होती है।
2: पैतृक संपत्ति किसी को भी कानूनी उत्तराधिकार से प्राप्त होती है, पहला। दूसरा, वसीयत द्वारा प्राप्त होती है, जिसे विल कहते हैं
1: जी।
2: और तीसरा, दान डीड ऑफ गिफ्ट द्वारा पिता को जो संपत्ति प्राप्त होती है, पिता को संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए
1: जी,
2: उसे ही पैतृक संपत्ति माना गया है और कानून के अनुसार उसे ही पैतृक संपत्ति कहा जाता है।
1: अच्छा, उसके बाद है कि हिंदू महिला के अलावा मुस्लिम एवं ईसाई महिला के पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है, वो बताइए।
2: मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम धर्मावलंबी पुत्रियों को पुत्र का आधा अर्थात 50% 50% भाग मिलने की चर्चा है, बराबर नहीं। मुस्लिम विधि के अनुसार यही मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त होता है। संपत्ति पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। उत्तराधिकार का पालन मुस्लिम धर्म में कड़ाई से होता है। उपहार या उत्तराधिकार कानून में पुरुष के अंश 1/3 भाग रोकने का एक साधन भी माना गया है। पुत्री अविवाहित है तो पिता के घर में निवास करेगी, भरण पोषण विवाह तक ही उसका होगा अपने पिता के घर। लेकिन अगर मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है तो इद्दत की अवधि, कानून में इद्दत की अवधि कहा गया है
1: जी,
2: वह 3 माह की होती है। तो वह उसके बाद पिता पर दायित्व है भरण पोषण का, परंतु यदि उसकी संतान वयस्क है तो उस महिला के भरण पोषण का कर्तव्य और दायित्व पुत्र पर होता है। वहीं ईसाई धर्म में पुत्री को अपने माता पिता की संपदा में से अपने अन्य भाइयों की तरह समान अंश या समान भाग, बराबर का हिस्सा, शेयर मिलने की बात है, होती है।
1: अच्छा, तो ये तो हो गया कि मुस्लिम और ईसाई के बारे में भी आप बता दिए। अब है कि पैतृक संपत्ति में हिंदू महिलाओं के अधिकार का कानूनी पक्ष क्या है, वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए पहली बार 1874 ईस्वी में एक कानून बना था, विवाहित महिलाओं की संपत्ति का अधिनियम 1874। उसके बाद फिर उसमें कुछ संशोधन होकर एक दूसरा कानून बना, महिला संरक्षण अधिकार अधिनियम 1937 ईस्वी में। उसके आगे फिर 1956 में एक नया कानून जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और 2005 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक संशोधन हुआ जिसे कहा गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसके तहत इस अधिनियम में 39वां संशोधन हुआ उक्त अधिनियम की धारा 6 में। 1956 में जो कानून था उसको सितंबर 2005 में संशोधित किया गया। यह विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। इसके द्वारा धारा 6 में निहित जो भेदभाव था उसे दूर किया गया, पुत्र और पुत्री को समान बनाया गया। यह कानून सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पर लागू है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी इत्यादि धर्मावलंबियों पर यह कानून लागू नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था या जो है अभी, वह मिताक्षरा धारा के तहत संहिताबद्ध है। मिताक्षरा धारा के अनुसार संपत्ति का अर्थात पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे, परंतु 2005 में इस कानून में संशोधन हुआ और पैतृक संपत्ति में विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक कॉपरसेनर के रूप में मान्यता दी गई। अर्थात कॉपरसेनर का मतलब जन्म के साथ ही जो अधिकार प्राप्त हो जाए
1: जी,
2: वह अर्थात बराबर का हिस्सेदार अपने पुत्र अर्थात या तो उसका भाई है महिला का या उसके पिता का पुत्र है तो उसके बराबर समान अधिकार की बात की गई। जिस प्रकार पुत्र को जन्म से ही ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं, वैसे ही पुत्री को भी यह अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पैतृक संपत्ति में जो अधिकार है वह प्रदान किया गया, पुत्री को भी समान अधिकार दिया गया। लेकिन उसके साथ एक और चीज जोड़ दिया गया, वह है देनदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पुत्र के समान ही पुत्री को भी निभानी पड़ेगी। यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है। यहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि विल अर्थात इच्छा पत्र जिसे वसीयत भी कहते हैं के माध्यम से। 2005 के उक्त संशोधन से पूर्व संविधान में मौजूद जो समानता का मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका हनन हो रहा था, और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2005 में संशोधन किया गया इस कानून में। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। फिर भी कई मामलों में यह प्रश्न उठा कि क्या कानून भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात पहले से ही लागू हो जाएगा, जब कानून बनता है तो लागू उसके बाद होता है, लेकिन उसको उसके पहले से लागू नहीं किया जाता है। लेकिन यह प्रश्न इस कानून में उठा था। और दूसरा कि महिलाओं को यह जो अधिकार है पैतृक संपत्ति में, क्या पिता के जीवित स्थिति पर निर्भर करता है? अगर पिता जीवित नहीं है तो क्या उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त होगा? इन सब को लेकर ही इस कानून में संशोधन किया गया था
1: जी। ये तो आप बहुत अच्छे ढंग से हमारे श्रोताओं को बताइए। तो अब आप ये बताइए कि इन सब स्थितियों से निबटने के लिए माननीय न्यायालय न्यायपालिका की क्या अवधारणा रही है, यानी क्या निर्णय है?
2: देखिए, सबसे पहले तो इन स्थितियों से निबटने के लिए इसी वर्ष 11 अगस्त 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या की, जिसके तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक अर्थात संयुक्त उत्तराधिकार का जो अधिकार था उसका विस्तार किया गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है, वह पिता के जीवित होने पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, इस निर्णय में बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया तथा हिंदू उत्तराधिकार जिसके माध्यम से उन्हें विरासत मिलेगी, इसमें जो संशोधन 2005 में हुआ था, 39वां संशोधन हुआ था, उसको यह विस्तारित किया। इसके पूर्व भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस जजमेंट के आने के पूर्व भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में प्रकाश के केस में और दन्नम्मा के केस में, 2018 में दन्नम्मा का केस, 2018 का केस, इन दोनों मुकदमा में इस मुद्दे पर विचार रखा था, परंतु वे परस्पर विरोधी विचार थे। इसलिए 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इसकी पुनर्व्याख्या की और इस व्याख्या के तहत इन सब समस्याओं को दूर किया गया। सामान्यतः या सारांश रूप में इससे जो लाभ प्राप्त होंगे वे लाभ है, जिन महिलाओं के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है और अगर उन्हें मालिकाना अधिकार मिल गया तो उन्हें जो घरेलू हिंसा जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई रहती है, घरेलू हिंसा का खतरा कम हो जाता है, मालिकाना हक से स्त्री का सशक्तिकरण होता है जो भारत सरकार और राज्य सरकार की भी योजना है। वैसे एक बात और बता दूं, भारत में सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा 1970 के दशक में गया में 2 भूमिहीन महिलाओं को उनके अपने नाम पर पहली बार सरकार से जमीन मिली थी। यह एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था बिहार सरकार का और उन्हें भूमि उपलब्ध कराया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे पास जीभ थी पर हम बोल नहीं सकते थे, हमारे पास पैर थे पर हम चल नहीं सकते थे, अब जब हमारे पास जमीन है तो हमारे पास बोलने और चलने की शक्ति आ गई है। इस प्रकार से यह कानून जो है स्त्री सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और पहले भी करता आया है। इस तरह से पैतृक संपत्ति में जो महिलाओं का अधिकार है वह जन्मजात अधिकार हो गया, इससे उन्हें अगर महरूम किया जाता है, इससे उन्हें अगर हटाया जाता है तो वे कानून का सहारा ले सकती हैं, इसके लिए माननीय न्यायालय जा सकती हैं जहां वे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती हैं और उन्हें वह अधिकार न्यायालय द्वारा दिलाया जाता है।
1: मनोज जी, आपसे हम अंत में एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार सहजता से प्राप्त नहीं हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, कानून किस प्रकार उस मदद करेंगे?
2: देखिए, अगर सामान्य तौर पर उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, जो अधिकार देने वाले हैं पैतृक संपत्ति में उनके पिता या भाई या दादा या जो भी संबंधी हो, अगर उन्हें वह अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो उन्हें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहले किसी अधिवक्ता के पास जाएं और अधिवक्ता से एक नोटिस निर्गत करवाएं, उनको कानूनी नोटिस जिसे कहा जाता है, कानूनी नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से भेजें संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित संबंधियों को कि क्यों नहीं आप वे अधिकार मुझे दे रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। इस संबंध में एक और सुविधा है सरकार के द्वारा, अगर कोई गरीब महिला है तो वे आवेदन दे सकती है, वहां पर एक लीगल एड कमिटी बनी रहती है सरकार की, एक विशेष सुविधा है ये। आप अगर गरीब हैं, वकील का फीस बहन करने में असमर्थ हैं तो आप चले जाएं न्यायालय में, न्यायालय में वहाँ सुविधा है उस तरह की, आप आवेदन दें और आवेदन के द्वारा आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा जो उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगा। कानूनी नोटिस से अगर यह मामला सहज हो जाए तो वहीं समाप्त हो जाता है मामला, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा जो माननीय न्यायालय में होता है। ये दूसरे स्तर की बात हुई जहां पर कोर्ट में आपको मुकदमा दायर करना होगा, लेकिन सबसे पहले मुकदमा दायर करने के पहले नोटिस देना बेहतर होता है। अगर मामला वहीं से सुलझ गया तो फिर केस मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है
1: और उन्हें अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है।
2: पैतृक संपत्ति में अधिकार न्यायालय द्वारा प्राप्त कराया जाता।
1: तो मनोज जी, आप अपना कीमती समय देकर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार के बारे में बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कानूनी सलाह के अंतर्गत भेंट वार्ता, विषय था पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। भेंट वार्ताकार थी अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा, भेंट करता थी अंजलि सिन्हा। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में इस गीत को। इस गीत को सुनना चाहा है सीसीएल बड़का काना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया परी, कोको चारू और आर के वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है चेपा कला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर।

लीजिए सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ये गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुनना चाहा है भादुड़ी झुमरी तिलियासी, उमेश चंद पांडे, शंभू चंद, अनिल चंद, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता एवं पांडे परिवार के समस्त लोग। रेलवे स्टेशन हजारीबाग से समी अहमद, शगुप्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद और एहसान अहमद।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। निजी सुनिए, हम आपको सुनवा रहे हैं, हम हो गए आपकी फिल्म का ये गाना। इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, इनके तमाम साथी हैं। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दत्न किसी, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, उनके तमाम साथी। हजारीबाग माली टोला से हैं कल्लू मालाकार, अरविंद मालाकार, अनिकेत, आदर्श, अमन, आशा और इनके तमाम परिवार के लोग।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। दीजिए सुनिए अगला गाना, फिल्म का नाम बागवान। आवाजें हैं अलका याग्निक और सुदेश भोसले की। इस गीत को सुनना चाह है जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीश फातमा, यास्मीन फातमा, सहनाज फातमा, इनके तमाम साथी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके तमाम साथीगण। दौलत बाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। सुनते हैं इस गीत को।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। क्या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज में। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:43 और 47 सेकंड से अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
5: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
6: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
5: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल

चाइना टाउन फिल्म के गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है,

0: गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों, या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्तिपूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा, हैं, या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट पोट।

0: उत्पल दत्त का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा।
2: मगर सर, इतनी सारी मिठाइयां।
1: अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा?
2: पुलिस की मार?
1: पुलिस की मार।
0: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफ्री कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए।

थिएटर की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं।

0: है।
1: उत्पल दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दूस्वप्नार नगरी, ए बार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस न हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ये फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी, लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आँखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: मेरा पे नहीं पूरा।

0: दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में, वो साहू जी बने नजर आए फिल्म थी बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।
1: Dovai sai tu, distorcer cando, ai soro mio, amore mio, dovai sai tu, distorcer cando.

बिप्लब दत्त के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

21 अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आँखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर।
1: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।

0: गोलमाल है।
1: शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गाना लीजिए सुनिए। लम्हे फिल्म का ये गीत है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथी की।

अगला गाना लीजिए, सुनिए अभिजीत और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। लीजिए सुनिए लावारिस फिल्म का ये गाना, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। लीजिए सुनिए कन्यादान फिल्म का ये गाना, आवाज लता मंगेशकर की है।

इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30:24 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे एक ही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का कुछ गाना।

आप सुन रहे थे एक ही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का कुछ गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet today approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared four multi-tracking projects of railway covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. Talking to media, Shetty said it was a comfortable victory and he is happy to move forward in the tournament. The 21-year-old shuttler is the only Indian remaining in the men's singles draw. India's Unnati Hooda today described her match against Canada's Michelle Lee as a good contest and praised her opponent for playing really well. Talking to media, the Indian prodigy said she was happy with the way she played but felt unfortunate that she could not convert her performance into a win. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his two-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karin Brutyon, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Azrian. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation, and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of Men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands today to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165-run victory over host Sri Lanka in the first test in Galle today to take a 1-0 lead in the two-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sutar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हुए हैं। यही संपन्न होती है हमारी आज की सभा। श्रोताओं, कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।